एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शिक्षा वर्ष 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, माफ कीजिएगा 29वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: अब आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहां से आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें, बागवानी फसलों के लिए जल प्रबंधन।
3: किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें बागवानी फसल में समेकित जल प्रबंधन की। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। कृषि में जल मुख्यतः सिंचाई के लिए काम में लाया जाता है। फसलों के उत्पादन में जल एक मुख्य संसाधन है। किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्षा आधारित क्षेत्रों के पानी की हवा को रोकना या कम करना होगा और इसे उचित स्थान पर संग्रह करना होगा, जिसे सूखा या वर्षा ना होने के समय सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। बागवानी फसलों का कार्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इनके समुचित रखरखाव के लिए सिंचाई जल की मांग का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है। कारण यह है कि इस विधि की दक्षता लगभग 95% है। ग्रामीण भाइयों, वर्षा जल संग्रह कर फसलों के लिए उपयोग में लाना कोई नई पद्धति नहीं है, यह बहुत पुरानी विधि है और ये पाया भी गया है कि 50% से भी अधिक वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है और नदियों द्वारा बह जाता है। अगर इस बहाव को रोका जाए और तालाबों और जलाशयों में संग्रह किया जाए तो भदई और रवि फसलों को सफलतापूर्वक उपजाया जा सकता है। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, वर्षा जल का खेतों में ही संग्रह मेड़ बनाकर, जहाँ वर्षा 300 से 400 मिलीमीटर तक होती है, हो सकता है। ढाल के विपरीत जुताई कर कुंड में ही जल जमा करना, जिससे जमीन में पानी रिसने का समय मिलता है। जहाँ वर्षा 400 मिलीमीटर से अधिक होती है वहाँ खेतों में पूरा पानी संग्रह करना मुश्किल है, इसलिए वर्षा ऋतु में तालाब बनाकर जल संग्रह करते हैं। किसान भाइयों, बांध बनाने के समय यह जानना जरूरी है कि बांध बनाने का प्रयोजन क्या है और इसके अनुसार हमें उसके स्थान और आकार का चुनाव करना होगा। अगर सिंचाई के लिए बनाना है तो पहले वहाँ का सिंचित क्षेत्र जानना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमें बांध का आकार भी बनाना होगा। आर्थिक दृष्टि से बांध वहाँ होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सके और मिट्टी की भराई भी कम से कम हो, जहाँ जगह सकरा हो और पानी जमा करने का जगह गहरा हो। अगर बांध ऊंची जमीन पर है तो सिंचाई के लिए नाला या नहर का उपयोग होगा और पानी गुरुत्वाकर्षण से अपने आप नहर में बहेगा। बांध नीची जमीन पर होगा तो सिंचाई के लिए पंप और पाइप की आवश्यकता होगी। बांध उसी स्थान पर बनाना उचित है जहाँ मिट्टी आसानी से मिल जाए। मिट्टी क्षारीय और दलदली नहीं होना चाहिए। भारी मिट्टी वर्षा में फूलेगी और गर्मियों में सिकुड़ जाएगी, जिससे बांध में दरार हो जाएगा। मिट्टी की बांध की चौड़ाई मिट्टी से पानी के रिसाव के रास्ते पर निर्भर करता है। अगर बांध की चौड़ाई कम करना है किसान भाइयों, तो बांध के बीच में करीब 1 मीटर अपारगम में मिट्टी या पदार्थ देना होगा, जिससे पानी का रिसाव कम हो। जहाँ की जमीन बांध के लिए उपयुक्त नहीं है वहाँ वर्षा का पानी जमा करने के लिए तालाब ही बनाना उचित होगा। जल ग्रहण क्षेत्रों का आकार, ढाल, मिट्टी की संरचना और प्रकार, वार्षिक वर्षा इत्यादि, तालाब में मिट्टी को आने से रोकना, ये सारी बातें जरूरी हैं। किसान भाइयों, अगर जल संग्रह क्षेत्र में कहीं प्राकृतिक गड्ढा है तो वह स्थान तालाब के लिए सर्वोत्तम है। वहाँ मिट्टी की कोड़ाई भी कम होती है। जहाँ की मिट्टी में चूना, बड़ा दरार या नाली हो, वहाँ ऐसा स्थान तालाब के लिए उपयोगी नहीं है। अगर तालाब कोड़ाई के समय पानी निकल जाए तो वैसे तालाब में पानी सालों भर रहता है। किसान भाइयों, तालाब का आकार पानी के उपयोग पर निर्भर करता है। तालाब सिंचाई के उद्देश्य से पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए या सभी जगहों के लिए बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई और उन्नत सिंचाई प्रणाली, जिसके द्वारा बागवानी फसलों के पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइपों द्वारा कम समय अंतराल पर पानी दिया जा सकता है। वर्षा से पहले सिंचाई की व्यवस्था कर लेना बहुत सही होता है, जिससे कि हम वर्षा जल का संरक्षण बेहतर विधि से कर सकें। किसान भाइयों, हम बातें कर रहे थे बागवानी फसलों में समेकित जल प्रबंधन की। इसी जानकारी के साथ हमें कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें में बागवानी फसलों के लिए जल प्रबंधन। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। ये सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
4: One eight two.

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

मानव अपने अच्छे विचारों से महान बनता है, न कि पहनावे दिखावे से। जिनमें सादगी, सरलता, विनम्रता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सादा जीवन उच्च विचार सूक्ति का तात्पर्य व्यक्तित्व से है, चरित्र से है। जिनका जीवन सरल सहज है, व्यवहार कुशलता से भरपूर हैं जो लोग, जिनकी वाणी मीठी है, स्वार्थ से परे परमार्थ करने वाले हैं, वो मनुष्य सचमुच मानवता के प्रतीक हैं। आज के दौर में लोग कृत्रिम हो गए हैं, दिखावे आडंबर में हमेशा उलझे रहते हैं। औरों से ज़्यादा पाने की लालसा उन्हें हमेशा अशांत रखती है। जीवन भर और पाने की इच्छा में वो भागते रहते हैं और ऐसे लोगों का जीवन अशांत, तनावग्रस्त, अस्वस्थ रहता है। मानव इच्छाएं तो अनंत हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो इस बात को समझता है वह सीमित संसाधन में भी प्रसन्न रहता है। संत कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात हे प्रभु, मुझे बस इतना ही दीजिए जिसमें मेरा पूरा परिवार अच्छे से रह सके और भरण पोषण हो सके। ना मैं भूखा रहूं, ना ही मेरे दरवाजे से कोई अतिथि भूखा जाए, और इससे ज़्यादा पाने की लालसा नहीं। जो सच में उच्च विचार वाले होते हैं वो सदैव शांत रहते हैं, सीधे सरल हृदय, आडंबर से दूर पर हित करने वाले होते हैं। हमें उन आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए जिनका जीवन सादगी भरा हुआ था। गुरु नानक देव, बापूजी, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ईश्वर चंद्र सागर, मदर टेरेसा जैसे कई महान संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को आत्मसात किया और सदैव लोगों के काम आते रहे, परमार्थ करते रहे। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास आज भी मिल जाते हैं जिन्होंने सदैव सादगी को ही अपनाया और अपना जीवन सीधे सरल तरीके से व्यतीत किया। धन दौलत से परे शांतिप्रिय जीवन, जो लोग संतुष्ट होते हैं उनका जीवन ऐसा ही होता है और वो सदैव सुखी होते हैं। लेकिन जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इच्छाओं की तो कभी भी कोई सीमा नहीं होती और पाने की इच्छा उन्हें दुखी रखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि औरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह जिंदगी भर इसके पीछे

हाँकते रहते हैं। मानव के उच्च विचार उसे सफलता सम्मान दिलाते हैं, और ऐसे लोग महान होते हैं जिनके विचार उच्च होते हैं, जिनका चरित्र अच्छा होता है, और ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं और वो हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है, आडंबर नहीं होता है, वो सादगी पसंद होते हैं, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आइए चिंतन के इन क्षणों में हम उन महापुरुषों के आदर्शों का सम्मान करते हुए उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं।

अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी से चिंतन सादा जीवन उच्च विचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आज सुनते हरिओम शरण की आवाज़ में भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में भक्ति संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, परिवार में बढ़ती संवादहीनता, कारण बचाओ। भेंट वार्ता कारण डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार मिश्रा।

0: मित्रों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आपके साथ लेकर आ रहे हैं। वो है परिवार में बढ़ती संवादहीनता। आखिर इसका कारण क्या है और इसका निदान हम कैसे करें? परिवार में संवादहीनता कायम हो गई है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं और अपना ज़्यादा समय मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में निकालते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, परिवार में बिखराव हो जा रहा है, बच्चों के साथ अब अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं और कभी कभी तो हिंसा का रूप भी धारण कर ले रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है और कैसे इसका निदान किया जाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आमंत्रित हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल। आप वर्तमान में कंसल्टेंट हैं SDA मिशन और RK मिशन और आई बैंक रांची में, और आप एक्स फूड कंसल्टेंट झारखंड भी रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल ऑफ झारखंड को भी आप सुशोभित कर चुके हैं। बर्नवाल सर, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: परिवार में संवादहीनता आजकल क्यों हो गई है सर?
1: अगर सही मायने में कहा जाए तो एक सिंगल कारण है, लोगों का आर्थिक लगाव या अधिक पैसे कमाने की धुन एक सिंगल कारण है जिसके कारण परिवार में बिखराव या टूटना हो रहा है। हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले बचपन से। पहले बच्चे को देखभाल माँ बाप करता था, बाप कमाता था तो माँ अपना केयर करता था, लेकिन अब क्या होता है, दोनों कमा रहे हैं कि उनके एम्बिशन इतने बढ़ गए हैं, उनकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि वो एक ही कमाई से फुलफिल नहीं हो सकता है। इसका होता क्या है, बच्चे को मेड या दाई के साथ दे देता है जिसका पालन पोषण करता है। अगर वो परिवार लकी हुआ तो उनके पेरेंट्स, माँ के या बाप के पेरेंट्स आकर संभाल देते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल से कुछ ही परिवार हो पाता है, अधिकांश परिवार में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं लेटेज। लेटेज मतलब अर्निंग एज, जाडी जाके 15 से 40-45 साल के बीच में। तो उस समय सुबह निकलता है आदमी, काम करके आता है, थका रहता है तो बात करने का समय नहीं मिलता है, और थोड़ा समय भी मिलता है तो चाहता है कि सोशल मीडिया में, मोबाइल पे, लैपटॉप में व्यस्त रहें, और इसके कारण परिवार टूट रहा है। पति पत्नियों में आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आप बात करोगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन बात नहीं करोगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप संवाद रेगुलर रूप से करते रहो तो ये संभावना बनती है वो जो दुराव हो रहा है वो दुराव नहीं होगा। उसके बाद आते हैं ओल्ड एज में। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो भी आए थोड़ा सा हमें समय दें। एक मुझे रिसेंटली याद पड़ रहा है एक कहानी क्या, सच्ची घटना ही है। बहू और बेटे जा रहे थे मार्केटिंग करने, तो माँ से पूछा कि माँ कुछ मंगाना है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तब कहा कि ठीक है बेटा हम लिख के दे रहे हैं। तो एक कागज़ पर लिखा उन्होंने और बहू और बेटे दोनों मार्केट चले गए। मार्केटिंग जब कर लिए तब बोले कि माँ का कुछ डिमांड है उसको हम देख लेते हैं, खरीद लें। तो कागज़ जब खोला गया तो उसमें एक लिखा हुआ था कि बेटा माँ को कुछ क्षण दे दो जिसमें हम बेटे को गोद ले सकें, उसको खाना खिला सकें, दो बात कर सकें। उसके बाद दोनों बहू

0: बेटे वहाँ रोने लगे, भरचौड़ी आंसू निकल गया। और उन्होंने देखा कि माँ बाप को सामान नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको उनके साथ बात करने के लिए संवाद करने की आवश्यकता है, जिससे वो अपने समय को आसानी से पार कर सकें। एक और कहानी है, भी सच्ची घटना है। एक बुजुर्ग पिता थे, उनके रूम में एसी टीवी सब लगा हुआ था, चलना फिरना मन था, तो बहुत रिक्वेस्ट करके बेटा बहू को कहा कि मुझे नीचे बरांडा में मेरा चारपाई लगा दो। उन्हें तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंत में बहुत रिक्वेस्ट किया तो कहा चलो लगा देते हैं। तो चारपाई उनका बरांडा में लग दिया गया। उनके पोते थे करीब 5-6 साल 7 साल का, पोता साथ बात करने लगे, गेंद खेलने लगे। 2-4 दिन के बाद उनका बेटा आता है तो पोता कह रहा है कि दादाजी गेंद फेंकिए। बेटा कहता है कि क्या कह रहे हो, तो चल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं दादाजी चल सकते हैं, देखिए देखिए फेंकते हैं वो। तब उनको महसूस हुआ कि इनको फैसिलिटी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको चाहिए कि बच्चे के साथ संवाद वो करें, उनके साथ खेले कूदें, जिसे वो फिट रह सके। तो संवादहीनता बहुत अधिक हो रहा है परिवार में, और अगर संवादहीनता से हम बच पाएँ तो परिवार बहुत हद तक हमारा बच सकता है।
1: डॉक्टर साहब, संवादहीनता के कारण लोग अवसादित भी होते जा रहे हैं, कुछ कुछ लोग हिंसा का सहारा भी लेने लग जा रहे हैं, जो एक बड़ा ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, एक अच्छा सुखद खुशनुमा माहौल, एक खुशनुमा पल अपने बच्चे अपने परिवार के साथ बिताया जाए।
0: हमारा एक दोस्त था, जो उसने कुछ डिमांड किया जब मेडिकल में था, तो उसके भाई और पिताजी ने सारा इनकम दिखा दिया, अब तुम खर्च इसमें करो घर का और अपना पैसा निकाल लो। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ गार्जियन के साथ आप शेयर करते हो तो बहुत हद तक ये अवसाद संवादहीनता जो है बच सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है कि आप कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो। तो अगर आप इस पर बच्चे को ध्यान देते हैं कि हम जो कमा रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे खर्च होता है, तो बहुत हद तक आप बच्चे को हिंसक होने से बच सकते हैं। मेरी मान्यता है कि आप बच्चे को हर एक्टिविटीज उनका सहयोग करें, और साथ में वैसे माँ बाप से जिनको एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो कृपया इस पर अंकुश रखें, ताकि बच्चे अपने फाइनेंशियल पोजिशन को कि पैसा कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, वो अपना कंट्रोल कर सके और उनके फ्यूचर भी अच्छा है। तो मेरा सभी गार्जियन से अनुरोध रहेगा कि बच्चे को उतना ही पैसा दें जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक खर्च करें। दो बात होती है, एक होता है उनके दोस्तों में ईर्ष्या की भावना होती है, और अगर उनका बच्चा किसी से कुछ मिसबिहेव किया तो रिएक्शन में वो बच्चा भी रिएक्शन में मारपीट कर लेता है। बच्चे के साथ या इवन माँ बाप के साथ अगर शेयर किया जाए तो बहुत हद तक इससे हम बच सकते हैं।
1: आजकल लोग किसी से संवाद स्थापित भी करते हैं तो वो व्हाट्सएप के सहारे, एक कमरे से दूसरे कमरे से जाने से वो बचते हैं और मोबाइल का वो उपयोग करने लग जाते हैं। साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं तो बातचीत तो दूर की बात है। तो कैसे तारतम्य स्थापित किया जाए घर परिवार में?
0: इसका फिर एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या सो कॉल्ड मोबाइल, क्योंकि अभी भी बहुत लोग लैपटॉप वगैरह का उपयोग कम करता है, तो मोबाइल का उपयोग फिक्स टाइम में किया जाए, और जिस समय सभी लोग रहें उस समय एक नियम बना लिया जाए कि मोबाइल का उपयोग हम नहीं करेंगे, और ये मिलजुल कर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
1: और साथ बैठकर भोजन करें और आपस की समस्याएं सुनने की कोशिश करें कि क्या समस्याएं हैं और उसका निदान भी किया जाए।
0: क्योंकि और समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर निश्चित रखा जाए तो एक समय अगर एक ही कुर्सी टेबल पर बैठ के लोग खाना खाएं तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है और समस्या का समाधान हो सकता है।
1: यदि संवादहीनता लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है डॉक्टर साहब?
0: अभी के समय में सबसे बड़ा है डिप्रेशन या अवसाद। डिप्रेशन में बहुत सारी बातें होती है, अगर डिप्रेशन पेशेंट तो हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, जॉइंट पेन होगा, मतलब सारे फिजिकल डिजीजेज जो आप कल्पना कर सकते हो अगर डिप्रेशन में गए हो तो सब कुछ हो सकता है, जिसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए एक ही उपाय है कि परिवार में संवादहीनता किसी नहीं रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे समस्या समझाएं,
1: आपस में मिलें बैठें बातचीत करें, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि लगातार हम बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, सिर्फ हाय हेलो करके ही रह जाते हैं और अपने कामों में हम व्यस्त रह जाते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं संवादहीनता। फिर आपस में प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगा और कैसे हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे? तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, मिलिए जुलिए हंसीए, शेयर कीजिए।

0: मिलिए जुलिए, हंसीए, शेयर करिए, ये चाहेंगे। और साथ में एक अनुरोध और करेंगे कि आपका प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्क्रीन टाइम एंड प्रॉपर स्लीप, अगर तीनों चीज़ आप मेंटेन करते हैं तो आप बहुत हद तक सभी बीमारियों से ना अवसाद से बच सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, परिवार में बढ़ती संवादहीनता कारण बचाओ। भेंट वार्ता का थे डॉक्टर त्रिवन प्रसाद वर्णवाल। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
2: बातें कीजिएगा, कुछ शेयर कीजिएगा, तभी जिंदगी का आनंद है। नमस्कार, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश माघव। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves, Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting of SEBI held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The decision was taken to introduce a new quick transmission processing

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में यानी 8:15 पर आप सुनेंगे राग रंग शास्त्रीय संगीत 7:15 पर आप सुनेंगे राग रंग शास्त्रीय संगीत। गायन राग ठुमरी शोभा गुट्टू से। करुण की बातें आप सुनेंगे 7:45 पर, जिसमें आप सुनेंगे साइबर बुकिंग एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव। पेट वार्ता कर रहे होंगे श्री निर्मल कुमार भारती और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। 8:00 का समय होगा दिल्ली से प्रभात समाचार प्रभात का। मॉर्निंग न्यूज का समय होगा 8:15 पर। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। गीत गुंजन का समय होगा 8:45 पर। 9:00 आप सुनेंगे जोहार पलामू। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत हिंदी में समाचार का समय होगा 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार विविध भारती आप सुनेंगे 10:10 पर। 11:00 का समय होगा रंग तरंग का। 12:00 यादव की महफिल। 1:00 का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 1:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती। 2:00 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का दिल्ली और मुंबई से। 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में। 2:30 पर हम चलेंगे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे विविध भारती में। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:55 पर। 3:00 का समय होगा मुंबई से विविध भारती में मन चाहे गीत। 3:30 पर विविध भारती में नाट्य तरंग। 4:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का।

4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में बॉम्बे टाक वीजा प्रादेशिक समाचार। आप सुनेंगे शाम 5 बजे रांची से। 5:02 पर हम चलेंगे विविध भारती, जिसमें आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी को आप सुनेंगे 5:35 पर। 6 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। खेती बाड़ी का समय होगा 6:02 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का रांची से। 7:10 पर आप सुनेंगे रांची से जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि। विज्ञान जगत का समय होगा 7:45 पर। 8 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 8:10 पर आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम रांची से। 8:45 पर हम चलेंगे दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9 बजे, जो दिल्ली से प्रसारित होंगे। दिल्ली से आप सुनेंगे 9:15 पर उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार रजनीगंधा का समय होगा 10 बजे,

ग्यारह बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से, और हम अपने सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी मेरी आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं राग रंग शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे रागरंग शास्त्रीय संगीत गायन राग ठुमरी शोभा गुरटू से। हम आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं कानून की बातें, भेंटवार्ता है, साइबर बुलिंग अब सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव। भेंटवार्ताकार है श्री निर्मल कुमार भारती, उनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार।

0: घटना हो गई है तो उसकी पहचान को इंटरनेट पर डालना यह एक साइबर अपराध है, इसको बचा कर रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अपने घर के बच्चों को इंटरनेट का मिनिमम इस्तेमाल करने दें, और जब बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें बीइंग गार्जियन आप ये बताएं कि इसका इस्तेमाल किस सीमा तक किया जाए और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।
1: जी निर्मल जी, जब इस तरह की घटना घटित हो जाती है, आपकी फ़ोटो का भेजा इस्तेमाल किया जाता है और एआई के माध्यम से अश्लील सामग्री आपके फ़ोटो में जोड़कर उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है वो कानून का किस प्रकार सहारा ले, अपना बचाव किस प्रकार करे?
0: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कानून हमारे साथ कहाँ तक है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि भारत में बहुत पहले से ही भारत की सरकार ने यह सोचा और इस बात पर विचार किया कि साइबर बुलिंग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो सन 2000 ईस्वी में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमारे यहाँ लाया जा चुका है और उसमें साइबर अपराधों के लिए एक बड़े पैमाने पर डील किया गया है कि साइबर अपराध क्या है, किस तरह की सामग्रियों को साइबर क्राइम में आपराधिक सामग्री मानी जाएगी वगैरह वगैरह। धारा 66C जो है वो आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट से संबंधित है, यानी कि किसी के पहचान का गलत ढंग से इंटरनेट पर इस्तेमाल करना यह अपराध है धारा 66C में। 66D जो है वो कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण या धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। धारा 67 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिकली प्रकाशन पर रोक लगाने से संबंधित है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 67A और 67B जो है ये यौन रूप से स्पष्ट सामग्री और बाल अश्लीलता से संबंधित है, यानी कि बच्चों से संबंधित अगर कोई अश्लील सामग्री को इंटरनेट पर डाला जाता है तो ये बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये तो हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता और अभी वर्तमान में जो BNS है इसमें भी साइबर अपराध को लेकर कई तरह के प्रावधान डाले गए हैं। जैसे अगर किसी के निजी सामग्रियों को इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है तो यह एक डिफामेशन यानी कि मानहानिकारक है, इसके लिए लोग क्रिमिनल डिफामेशन का केस कर सकते हैं। अगर आपराधिक धमकी, पीछा करना, झूठी एवं हानिकारक सामग्रियों के प्रसार को अगर किया जाता है तो ये साइबर क्राइम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ BNS में भी अपराध है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, जैसा कि जानते हैं कि बच्चों के लिए जो यौन अपराध हैं उसको लेकर जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट में भी ऑनलाइन यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले को लेकर विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।
1: जी, तो जो पीड़ित है या पीड़िता है वो क्या करे, कहाँ अपनी बात रखे और कैसे इन सब चीज़ों से वो बाहर निकले?
0: बिल्कुल सही बात है, हम अब कानून के बारे में न सिर्फ जानें बल्कि कानून का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले कि अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से उत्पीड़न करने का प्रयास करता है तो उसके किसी भी उत्पीड़न का जवाब न दें। दूसरे, अपने संदेशों, पोस्ट और चैट के स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखें। अगर मान, जैसा कि आप जानते हैं कि WhatsApp के माध्यम से अगर कोई संदेश भेजा जाता है तो वो इन टू इन इनक्रिप्टेड होता है और भेजने वाले चाहें तो एक विद इन समय में उसे डिलीट भी कर सकते हैं अपने तरफ से। तो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि उन सामग्रियों को सुरक्षित रखें ताकि अगर कभी कानूनी मामला बनता है तो उसका इस्तेमाल न्यायालय के पास, पुलिस के पास किया जा सके। सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करें। अगर मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सामग्री देख लेते हैं जो ऑप्शन है, नहीं होना चाहिए, तो वहां पर उसका शिकायत करने का प्रावधान होता है। फेसबुक वगैरह में आप देखेंगे अगर किसी वीडियो से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर उसमें गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, कोई यौन सामग्री अगर फैलाई जा रही है, तो उसकी शिकायत उसी समय उसी वीडियो के लिंक में कर सकते हैं। तो ये फेसबुक की या उस तरह के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की जिम्मेदारी होती है कि उसे हटा देता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर बुलिंग हो रहा है तो निकटतम थाने या साइबर थाने में जाकर अपने बात को रख सकता है और उसकी शिकायत शिकायत दर्ज कर सकता है, FIR दर्ज कर सकता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, यहाँ पर जाकर अगर आप अपने बातों को रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सरकार उस पर डायरेक्ट एक्शन लेती है। उसी तरह अगर कोई साइबर बुलिंग कर रहा है तो उसे छिपाएं नहीं बल्कि कानून के सामने उसे लेकर आएं, अपने मित्रों को अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं सो दैट कि उस पर जल्दी से जल्दी और उचित कार्रवाई की जा सके।
1: जी निर्मल जी, कैसे हम इन सब चीज़ों से अपना बचाव करें, गलत सामग्री पोस्ट नहीं करें, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या उस पर हम साझा नहीं करें और जो भी साझा करें वो तथ्यपूर्ण जानकारी वहाँ पहुँचाएँ ताकि किसी तरह की भ्रामक जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचे?
0: सबसे पहली बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी सामग्री को इंटरनेट पर पोस्ट करने से पहले जाँच कर लें और दूसरे के द्वारा डाली गई सामग्री पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। और सबसे बड़ी बात है तीसरी बात कि अगर कोई सामग्री ऐसी है जो जिसे कि आपकी अंतरात्मा अलाउ नहीं करती है कि ये नहीं होनी चाहिए तो तुरंत उसकी शिकायत करें, उचित फोरम में, फोरम बने हुए हैं, उसकी शिकायत करें।
1: जी निर्मल जी, सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें बहुत सारे धोखाधड़ी भी की जाती है, साइबर क्राइम किया जाता है और आपके बैंक से पैसे की निकासी भी हो जाती है, आपसे बहुत सारे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है फ़ोन के माध्यम से, तो इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे निर्मल जी कि इस तरह की बातें होती हैं, कोई आपको फ़ोन करता है और कुछ आपसे बैंक की जानकारियाँ मांगना चाहता है या और भी कोई गोपनीय जानकारी आपसे साझा करना चाहता है या फिर आपको धमकाता है, साइबर अरेस्ट किया जाता है, इससे हम कैसे बचें?
0: देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि किसी भी तरह की ऐसी सामग्री को पोस्ट ना करें। आपके प्रश्न का जवाब मैं दो खंड से दूंगा, दो तरह से दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में सोशल मीडिया पर कभी साझा ना करें, विजिटिंग बैंक ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं बैंक जा रहा हूँ पैसे निकालने के लिए। दूसरी बात है कि अपने अकाउंट, अपने पासवर्ड, अपने OTPs की जानकारी न तो किसी को फ़ोन पर दें और न ही इसे सोशल मीडिया में कभी पोस्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, वीडियो चैट के माध्यम से आपको यह कहने का कोशिश करता है कि हमें कुछ उपलब्ध कराएं तो वो उपलब्ध ना कराएं, और अगर डराने का प्रयास करता है यह कहते हुए कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, डिजिटल अरेस्ट एक अपने आप में एक बहुत बृहत विषय है, आप ये जानें कि पुलिस कभी भी डिजिटली अरेस्ट ना करती है बल्कि अरेस्ट जब भी किया जाता है तो किसी व्यक्ति को वारंट दिखाकर अरेस्ट किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट एक सर्वथा गलत बात है, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई अरेस्ट होता नहीं है, इसीलिए इससे दूर रहने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है सो दैट कि डिजिटल अरेस्ट हम नहीं हों और अगर कोई ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करके आपसे पैसे की डिमांड करे तो यह मानकर चलें कि वह साइबर ठग है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करना है।
1: इस तरह की कॉल्स को आप अटेंड ही नहीं करें, किसी तरह की आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो आप अपना बचाव करें और कोई भी जानकारी इस और कोई फोन कॉल्स, गलत फोन कॉल्स आते हैं, कोई ये कहता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं या आपको धमकाने की कोशिश करता है, तो इससे आप सजग रहिए और जागरूक रहिए और इस तरह की कोई भी फोन कॉल का जवाब नहीं दीजिए, और इस तरह की फोन कॉल्स आते हैं तो फिर साइबर सेल है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहूँगा कि पोस्ट करने से पहले सोचें, शेयर करने से पहले सत्यापित करें और ऑनलाइन भी दूसरों का सम्मान करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मल कुमार भारती जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा। आज आप इस कार्यक्रम में साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचें और कानूनी रूप से कैसे हम अपना बचाव करें, इस पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। भेंटवार्ताकार थे श्री निर्मल कुमार भारती, अंडर सेक्रेटरी झालसा। भेंटकर्ता संजय कुमार लाल, प्रस्तुति संजय कुमार लाल की। कानून की बात प्रोग्राम यहीं तक। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, और उसके बाद प्रादेशिक समाचार 8:30 से। बस थोड़ा सा इंतजार। लो फिर।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रोइड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
8: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
7: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
9: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
7: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
5: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the president's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rai Rangpur.
12: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rai Rangpur, Akashwani News.
11: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
13: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate three indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodok, and INS Agrai, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly rupees 590 crore, a new 300-bed railway hospitals in Howrah, and a rail overbridge in East Midnapur. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives under the Digital Agriculture Mission, including AgriStack and the Dhanodhan Krishi Yojana. The Prime Minister's program extends to fisheries and animal husbandry with projects such as modern fishing harbour at

0: examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी। कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीसरे दिन एक स्वर्ण और एक रजत पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर जन कल्याण शिविर भी लगेंगे, जहां समस्याओं का समाधान और योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
3: 20 तारीख को ठीक 2 बजे 20 जून का दिन पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में डालेंगे। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में जनता की जायज समस्याओं का समाधान होगा।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रांची और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के जैप वन परिसर में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में नए लाभार्थी, युवा और विभिन्न क्षेत्रों की नियुक्ता शामिल हुए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तनवीर अहमद ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे देश में औपचारिक रोजगार और युवाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया है।
4: रांची में करीब 400 लोग नियोक्ता जो एम्प्लॉई हैं, सबकी भागीदारी बहुत अच्छी है। सोच है विकसित भारत की, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को सारे नियोक्ता और जो लोग आए हैं यहाँ पर उन सबका धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये स्कीम अच्छी चलती रहेगी और प्रधानमंत्री का सपना जो विकसित भारत का है कामयाब होगा।
2: इधर सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ। योजना के तहत 2 वर्षों में 3,50,00,000 रोजगार का लक्ष्य है। पहली नौकरी पर युवाओं को 15,000 रूपये और कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सांसद जोबा मांझी ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने कहा कि तय सीमा के भीतर सदर अस्पतालों की कमियां दूर न होने पर संबंधित सिविल सर्जन को पद से हटा दिया जाएगा।
5: 15 दिन का मैंने मोहलत दिया है कि हर बात मीडिया में नहीं आना चाहिए। खामियां आ रहा है तो खामियों को ठीक कीजिए और अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो मैंने 15 दिन तक का समय दिया सब सिविल सर्जन को हटा दें। जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं और रेफर हॉस्पिटल हैं वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है अपना, सब 108 के भरोसे है। तो जब मैं डिटेल मांगा तो बता रहा सर सारा एम्बुलेंस खराब है।
2: उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों में एम्बुलेंस की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार 224 नई एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। रांची में ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। कल महात्मा गांधी रोड पर मॉडिफाइड बाइक, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और बिना हेलमेट वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। जांच में 10 से ज्यादा मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं, जिनके साइलेंसर मौके पर ही खोलकर ऑनलाइन चालान काटे गए। इसके अलावा पॉल्यूशन फेल वाहनों और बिना हेलमेट चलने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड की करीब 8 से 10 फीसदी आबादी सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ा स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि राज्य में इस आनुवांशिक बीमारी का प्रसार काफी अधिक है।
6: प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि हम अपने राज्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग इसको और इंटेंसिफाई कर सकें। क्या फैसिलिटीज हमारे मरीजों को मिल रही है, उनका क्या हक है, उसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस बता सकें राज्य के नागरिकों को। सैया सब भी आई हुई थी, कपिंग कर सकें, उनको बता सकें कि पेशेंट को क्या क्या दवा अवेलेबल है, क्या क्या दवा उनको अवेलेबल कराना है, वैक्सीनेशन का क्या रोल है, बीमारी की क्या गंभीरता है, राज्य सरकार का क्या योगदान है।
2: और शेष समाचार इस विराम के बाद।
7: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोड्डा में स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में व्यापक स्तर पर योगाभ्यास चल रहा है। कई गांवों से हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। स्थानीय योग प्रेमियों और प्रशिक्षकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वैश्विक पहल से लोगों में सेहत के प्रति क्रेज बढ़ा है और योग से बीपी तथा शुगर जैसी बीमारियां नियंत्रित हो रही हैं।
9: जब से योग दिवस स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, तब से हम लोग योग से काफी जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके योग करते हैं और 21 जून को गांधी मैदान में लगभग 400 से 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और योग करेंगे।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल आज और कल खुले रहेंगे। शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संचालित होंगे। यहां योग गतिविधियां होंगी। शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है और कार्यक्रमों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून के राज्य में कई अन्य हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन राज्य के खिलाड़ियों ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। आरव यादव ने ट्रैक पर तेज रफ्तार दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं हजारीबाग के नूर आलम ने शानदार खेल दिखाते हुए रजत पदक जीता। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही प्रतियोगिता में मेजबान झारखंड के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। इन पदकों में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मांडर में 115 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का बिना रजिस्ट्री ही म्यूटेशन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, डीवीसी क्षेत्र के 6 जिलों में बिजली को लेकर ज्वाइंट वेंचर। प्रभात खबर लिखता है, 1 जुलाई से रांची से 4 विमान सेवाएं होंगी बंद। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची संघ कार्यालय के बाद कानपुर और लखनऊ में धमाके की थी तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी, कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीसरे दिन 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: आप सुन रहे थे

गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको सुनवाते हैं फिल्म किशोर कुम फिल्म शक्ति का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म दिल का ये गाना। श्रोता आप सुन रहे हैं गीत गुंजन। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म तेरे नाम का ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

जोहार पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के एक अच्छे से सुविचार के साथ। जी हाँ, हर दिन एक नया मौका है अपनी गलती सुधारने का और खुद को फिर से बेहतर बनाने का। जी हाँ, इस सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं आज का मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 29 डिग्री। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, वर्तमान जीवन शैली से उत्पन्न बीमारियां एवं योग से उपचार। वार्ताकार हैं राजू शरण, योग शिक्षक।

जीवन में आज हम बात करेंगे जीवन शैलीगत रोग, जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में लाइफ स्टाइल डिजीजेज। ये नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी रोग है ये हमारे जीवन शैली का परिणाम है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज, इसका मतलब है कि आपकी जीवन शैली अनियमित है। अब इसको कैसे हम समझें? इसको इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे हम अपने सामान्य जीवन में सभी कार्य को करने का एक समय नहीं रहा, जैसे विद्यालय में जो छात्र जाते हैं तो पहली घंटी में क्या पढ़ना है, दूसरी घंटी में क्या पढ़ना है, तीसरी घंटी में क्या पढ़ना है। कार्यालय में यदि हम जाते हैं तो हमें किस वक्त कौन सा कार्य निष्पादित करना है, फिर कल क्या करना है, जैसे एक रूटीन जीवन शैली होती है हमारी विद्यालयों में और ऑफिस में। परंतु हम अपने जीवन में किसी भी रूटीन

कौन सा पार्ट किस वक्त ज्यादा एक्टिव होता है, किस वक्त इनएक्टिव होता है, इन सब का एक निर्धारित समय होता है, जिसको कि सामान्य समय के साथ हम आपके बीच रखना चाहेंगे। जैसे हमारे शरीर के भीतर में एक बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जिसके माध्यम से शौच की निवृत्ति होती है, जिसके माध्यम से मल का वेग, मल बाहर आता है, जिसकी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन जिसका इनएक्टिव हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, और वो सक्रिय कब ज्यादा होता है, तो उसके सक्रिय होने का समय है प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक, यानी प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत सक्रिय होती है। अब जो सो के उठेंगे 8 बजे, तो 8 बजे तक तो हमारी बड़ी आंत निष्क्रिय हो गई, तो आज सामान्य आपको कब्जियत की शिकायत होती है, ये हो गया आपका लाइफ स्टाइल डिजीज। तो कब्जियत क्या हो गई, लाइफ स्टाइल डिजीज। अब भोजन करने का समय, तो भोजन करने का भी जो समय है वो कहते हैं ना, प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्योदय से पहले तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, सूर्योदय के बाद भी जो खाने का समय होता है वो सबसे बेहतरीन समय होता है, प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और वो भी जब हमारी अग्नि दाम स्वर दाया स्वर जो होता है ना, वो अग्नि होता है और बाया स्वर चंद्र स्वर होता है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है जिसको जठर कहते हैं, तो वो जब एक्टिव होती है उस समय भोजन करना, तो वो ज्यादा एक्टिव होती है, उसके एक्टिव होने का समय है 8 बजे से 11 बजे तक। तो यदि इस समय में आप भोजन करते हैं, और जो प्रातःकाल का भोजन होना चाहिए वो भरपूर भोजन होना चाहिए, तो वो समय है खाने का। अब सामान्य क्या है, आज के समय में हम उठते ही उठते बेटी पी लिया, अब बेटी पी लिया अब उसमें बेचारा सोया हुआ है, तो जिसके सोने का समय है उस पर आप गरम गरम जल डाल दो, तो सोचो क्या होगा उसकी हालत। तो लाइफ स्टाइल डिजीज में आपकी क्या हो गई, अपच की समस्या, कब्जियत की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, अनियत जीवन शैली के कारण आपका मोटापा, अनियत जीवन शैली के कारण आपका मधुमेह, अनियत जीवन शैली के कारण आपका थायराइड, फिर पीठ में दर्द, फिर कमर में दर्द, ये सब। अब यदि आपका बैठने का तरीका गलत है तो आपको कमर में दर्द हो जाएगा, सोने का तरीका गलत है तो कमर में दर्द हो जाएगा, बैठना कैसे है, जब भी बैठे रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी रहे, जब भी बैठे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चाहे आप कहीं भी बैठे, कार्यालय में बैठे, विद्यालय में बैठे, आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके बैठे, तो रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके बैठने मात्र से आपकी कमर दर्द की समस्या आधी कम हो जाती है, फिर पीठ का दर्द। तो इस प्रकार से जो हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज में आप मान ले, अब सोने का समय हमने प्रातःकाल भोजन का समय बताया, फिर दोपहर में एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, यदि आप 9 बजे खाए हैं दिन में, 10 बजे खाए हैं, तो फिर आपको कम से कम 2 बजे से पहले फिर नहीं खाना चाहिए। अभी सामान्य क्या हो गया है, जब जो जहां मिल जाए हम खा लेते हैं, तो अब फिर रात्रि का भोजन, सुबह का भोजन किया, भोजन से 1 घंटे के बाद जल का ग्रहण करना, यदि तुरंत भरपेट भोजन खाया, तुरंत पानी पी लिया, तो उससे अपच की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इसलिए भोजन से 1 घंटे के बाद जल का पीना, रात्रि में 8 बजे तक निश्चित रूप से भोजन कर लेना, ताकि 1 घंटे बाद 9 बजे जल पिए, फिर 10 बजे दूध पी के फिर सो जाए, रात में दूध के साथ हल्दी का सेवन, ये हम उधर बता चुके हैं। तो ऐसे हर कार्य को करने का, जो हमारा मस्तिष्क है जिस समय ज्यादा एक्टिव होता है, जिस समय हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होती है सुबह में 3 बजे, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए स्मरण करने वाली चीज जो होती है हम कहते हैं कि सुबह में उठ के याद करो, तो आजकल तो लोग 3 बजे तक कंप्यूटर देखते रहते हैं, कैलकुलेटर पे खेलते रहेंगे, कुछ मोबाइल पे खेलते रहेंगे, और 3 बजे सोएंगे और 12 बजे उठेंगे, तो ये अनित

जीवन शैली है। तो रात में 10 बजे निश्चित सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, यह नियमित जीवन शैली है। सूर्योदय से पूर्व जागरण यह नियमित जीवन शैली है। शौच से पूर्व कम से कम 3 गिलास पानी पीना, जिसको उषापान कहते हैं, फिर शौच से बाहर आकर आंखों पे पानी का छींटा मारना, फिर व्यायाम करना, व्यायाम शारीरिक व्यायाम शरीर के लिए। जिस शरीर से हम जीवन भर काम लेते हैं, उस शरीर को सिवाय भोजन के हम कुछ नहीं करते हैं उसके लिए, तो शरीर के लिए व्यायाम करना, और ये प्राण जो हमारे जीवन का आधार है इसके लिए प्राणायाम करना, फिर शरीर के जो मुख्य जोड़ हैं इनके लिए सूक्ष्म व्यायाम करना, फिर सूर्य नमस्कार थोड़ा, या यदि आप युवा हैं तो फिर थोड़ा दंड बैठक कर लेंगे। ये सब ऐसे कुछ क्रियाओं को करके आप चाहेंगे तो अपना एक जीवन शैली को नियमित कर लेंगे, तो ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो आपको नहीं होगा। तो लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने के लिए भी सबसे पहले तो अपना जीवन नियमित करना, और 1 घंटा व्यायाम के रूप में, प्राणायाम के रूप में, सूक्ष्म व्यायाम के रूप में। अब व्यायाम क्या क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार के 12 पूज होते हैं, वो सूर्य नमस्कार के 12 पूज हम पुनः आपको एक बार आग्रह कर ले, जिनको प्राणायाम व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम आदि प्रशिक्षण लेना हो वो हमारे पलामू पतंजलि से संपर्क कर सकते हैं, और हम उनको गांव में जाके इसकी पूरी विधिवत एक प्रशिक्षण देंगे, 3 दिन 5 दिन का, वो भी निःशुल्क होता है वो हमारा प्रशिक्षण। ऐसे लाइफ स्टाइल जो डिजीजेज है, अब मोटापा को कम करने के लिए आपको व्यायाम अधिक करना होगा। अब मोटापा बढ़ने का कारण क्या होता है, एक शरीर में एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम होता है लिप्टिन। लिप्टिन मॉलिक्यूल्स के भीतर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और उसमें जो एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो लिप्टिन मॉलिक्यूल कहलाता है, उसमें हमको अधिक खाने की वो एक वेग आता है, हर वक्त हमको लगता है खाते रहना, उसके कारण फिर आपका मोटापा बढ़ जाता है, और उसी का लिप्टिन मॉलिक्यूल का स्राव जब कम हो जाता है तो आपको फिर भूख नहीं लगती, या फिर कुछ भी खाओ तो फिर शरीर में नहीं लगता। तो ऐसे कुछ अपने शरीर के भीतर की जो क्रियाएं होती हैं, अब जिनको मधुमेह हो गया, लाइफ स्टाइल डिजीज में सबसे गंभीर बीमारी इन दिनों, और वैसे कहा जाए तो मोटापा सभी बीमारियों की मां है, जिसको जननी कहते हैं ना, मां, जिसको मोटापा हो गया उसको डायबिटीज होगा, उसको हृदय रोग होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ेगा, सब प्रकार की, उसको थायराइड होगा, सब प्रकार की बीमारी, उसको कमर दर्द होगा, उसको घुटनों का दर्द होगा, सारी परेशानी उसको होने वाली है, समझ लो।

अभी आप सुन रहे थे वर्तमान जीवन शैली से उत्पन्न बीमारियां एवं योग से उपचार, राजीव शरण योग शिक्षक से। और इसी के साथ जो हर पल हम उस समय आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जुहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का और संयोजक थे इसके लल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोता, हम आपको फिल्म संगीत में फिल्म लाल दुपट्टा मलमल के गानों को सुनवाते हैं।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत से हमें आज्ञा दीजिए, फिल्म लेंगे नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal farm today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Paharpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jehera and Ho Jehera Skill Center and Paharpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bengal Divas today. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country, bringing together India's rich cultural heritage and yoga traditions. The main national celebration of IDY 2026 will be held at Kolkata's historic Red Road under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where he will lead the nation in the common yoga protocol. The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. U.S. Special Envoy Steve Witkoff is traveling to Switzerland as preparations continue for a new round of talks between the United States and Iran. According to media reports, the negotiations are expected to focus on a possible nuclear agreement following the recently announced Memorandum of Understanding between the two countries aimed at ending hostilities in West Asia. In men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. Meanwhile, fast bowler Harshit Rana has joined the Indian squad for the final ODI after recovering from a knee injury. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in the opening Group C fixture. The victory lifts the South Americans to the top of the group on goal difference. Earlier today, Morocco secured a 1-0 victory over Scotland in their Group C match. Morocco took the lead in the very first minute through Ismail Saibari and held on to that advantage until the final whistle. And that is the end of this news bulletin.

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के

कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती, पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है।

बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही, और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है। पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का? और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

अनुभा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभव की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था, वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता, तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जात बड़ी बाबा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से ये धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर देगी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस

पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगिराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगिराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहां से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए, इस योग को

0: सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए,
1: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए,
0: बढ़ाया जाए।
1: है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
0: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो आपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय
0: थोड़ा
1: की?
0: सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट,
1: जी, कम से
0: जी
1: कम 20
0: कम से
1: मिनट
0: कम 20 मिनट
1: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा
0: दिल से
1: वो?
0: निकाले तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है, वो क्या क्या करे?
0: देखिए, सबसे फर्स्ट जो पहला है,
1: जी
0: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड,
1: हाँ
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: जी
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन,
1: जी, तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम
0: आसन,
1: में कौन कौन से प्राणायाम जो हैं वो बहुत जरूरी हैं?
0: प्राण,
1: भ्रामरी, शीतली,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना?
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे आप रोदन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके
1: हाँ,
0: अपने फेफड़े को,
1: सबसे
0: लंग्स
1: पहले
0: को क्लीन
1: भस्त्रिका
0: करते
1: करना
0: हैं,
1: है,
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले कपालभाति करनी
0: कपालभाति,
1: है। जी
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, अंत
1: इतने
0: में
1: सारे कर रहे
0: ओम,
1: हैं?
0: हाँ अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
1: अच्छा
0: ये पूरा
1: ठीक है ठीक
0: पैकेज
1: है।
0: हो गया,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे,
0: जी
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है,
1: जी
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है,
1: अच्छा
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको। हम
1: अच्छा
0: लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं,
1: जी जी
0: जिसमें तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है,
1: जी
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
1: जी
0: और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है, तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
1: अच्छा
0: हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाता है, जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है,
1: जी
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना,
0: तो
1: हम रेडियो पर हैं
0: जी
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं
1: पर
0: सकते,
1: भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से
0: हाँ,
1: आंखों को
0: आंखों
1: ढका
0: को बंद
1: जाता
0: करते
1: है।
0: हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है,
1: जी
0: मुंह बंद रखना है,
1: हाँ
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है,
1: हमिंग करना
0: बटरफ्लाइट की
1: है।
0: तरह।

0: और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी।
1: में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो श्री कृष्ण होता है,
0: जी
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है।
1: फिर उसके
0: तो
1: बाद
0: प्राणायाम की बात हुई,
1: जी
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए।
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा
1: योग का मतलब ही है जोड़ना,
0: जी
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
0: अच्छा
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए।
1: बढ़ाते
0: नहीं,
1: जाइए।
0: कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: जी ये सही कर रहे हैं, तो
0: जी
1: जोश में आकर होश नहीं खोना है।
0: बिल्कुल
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं,
0: जी
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
0: जी सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है।
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है।
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना।
1: जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी
1: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंगासन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता
1: मिल
0: है
1: जाता है।
0: जी।
1: ये
0: तो
1: सबसे
0: ये एक
1: इम्पोर्टेंट है
0: सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते
1: जोश
0: हैं।
1: में रहते हैं। और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं तो
0: जी,
1: उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब
0: और
1: से
0: आपकी
1: वो
0: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके
0: वो
1: अनुसार।
0: बाकायदा ईमानदारी से
1: जी
0: बताना है कि
1: हाँ,
0: भाई ये
1: जिन
0: समस्याएं
1: जिनकी
0: हैं।
1: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
0: हाँ, मैं वही
1: इन
0: पूछने आ
1: सबको।
0: रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे।
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
0: जी,
1: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
0: नियमित
1: वो
0: रूप से करते आए
1: नियमित
0: हैं।
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह को अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
0: जी, मैं समझ गया।
1: जी,
0: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए।
1: कोई भी चीज़ इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं,
1: जी
0: लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
1: जी
0: और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो

0: घंटे 15 घंटे हो गया, ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं? और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं,
1: जी
0: टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो
1: जी
0: लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं
1: जी
0: वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
0: जी
1: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज़ पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए, सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज़ चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है, क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
0: जी
1: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योग का बहुत ही
0: आपने इस तरह से
1: फायदेमंद
0: वर्गीकरण
1: है।
0: कर लिया है,
1: जी
0: अलग अलग लोगों के लिए
1: हाँ, जिससे
0: अलग अलग तरह
1: सब
0: के
1: सभी
0: योग जो
1: स्वस्थ
0: है
1: रहें।
0: तय कर लिए
1: जी
0: आपने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का
1: जी
0: काम आप कर रहे
1: जी जी
0: हैं। विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा
1: जी
0: है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है? क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
1: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया है
0: जी
1: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग
0: जी
1: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है। और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
0: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाएं पिएं, कैसे जिएं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
1: जी रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
0: चमत्कार
1: चमत्कार और संभव नहीं है,
0: जी।
1: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
0: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
1: हाँ,
0: फूड
1: पाँच
0: खा
1: साल
0: खा
1: में,
0: के।
1: 2 साल में, हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
0: जी
1: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे योग का, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से।
0: अच्छा,
1: क्योंकि सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है
0: जी।
1: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है। तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
0: बिल्कुल, तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
1: कहीं भी
0: स्कूल
1: कर सकते
0: में हो,
1: हैं
0: कॉलेज में
1: आप,
0: हो, घर पे हो।
1: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन।
0: जी
1: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
1: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
0: जी
1: मस्तिष्क से ही।
0: जी,
1: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
0: जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति? और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
1: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे। लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरुजी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है, अब देखेंगे तो फिट ही रहते हैं
0: जी।
1: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा जागरूक हैं। और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है। और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
1: जी,
0: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
1: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं। जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपनी लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी, बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है, जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है
0: जी। एक और बहुत ज़रूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ वह है हमारी

0: महिलाएं, उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं,
1: जी
0: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है। उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं,
1: जी
0: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
0: जी,
1: तरह की
0: मन भी कई बार अशांत रहता है।
1: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग, मेडिटेशन और
0: क्या
1: प्राणायाम।
0: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
0: जी
1: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं।
0: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
1: हाँ,
0: है।
1: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
0: जी
1: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फ़ायदा होता है,
0: जी
1: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है,
0: जी
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
0: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद, क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं, तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
1: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
0: मतलब हर साल 21 जून को करते
1: 21 जून को
0: हैं।
1: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
0: हाँ
1: योगा मैट भी खरीद लेते हैं।
0: हाँ
1: तो एक दिन करते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं।
0: जी
1: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
0: जी
1: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
0: और
1: और
0: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
1: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
0: जी
1: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में गीत दीवाना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा और नदीम श्रवण का संगीत।
1: देखो

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यही संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज

0: राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dounagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Diwas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history, through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency, or NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, or NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. International Yoga Day 2026, or ITY 2026, will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country. Former senior IIS officer Dipankar Mukhopadhyay passed away in Kolkata last night after a brief illness. He was 76. Mr. Mukhopadhyay served in various media units at the Ministry of INB and in News Services Division of All India Radio. He also served as AIR Special Correspondent in Singapore. He survived by his wife and daughter. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न। किया गया 300 से अधिक सफल ऑपरेशन, रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता की मौत। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह मॉक ड्रिल की जा रही है। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के SP को हाई अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और आसपास की फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे तथा कोचिंग सेंटरों की कड़ी निगरानी की जाएगी। उधर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। धनबाद जिले में कुल 7 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
3: लास्ट बार भी नीट एग्जाम हुआ, बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है NTA की तरफ से, कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ, पर फिर भी हम लोग सतर्क हैं और हम लोग की सभी पदाधिकारी सभी केंद्रों पर स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए और त्रुटि रहित परीक्षा को इस बार निभाएंगे।
2: भारतीय सेना और वायुसेना ने रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि के तहत 9वें मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। 5 दिनों तक

0: चले इस विशेष शिविर में 2500 से अधिक मरीजों की जांच की गई। एक रिपोर्ट।
1: रांची के सैन्य अस्पताल में आयोजित 9वें मेगा शिविर में आंखों की रोशनी लौटाने वाली 300 से अधिक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की गई, जिनमें 260 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन शामिल हैं। इस मानवीय पहल का सीधा लाभ क्षेत्र के 100 से अधिक वंचित आदिवासी मरीजों को मिला। शिविर के समापन समारोह में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सेना चिकित्सा कोर की सराहना करते हुए इसे सेवा परमो धर्म के संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक देश भर में 75,000 से अधिक मरीजों की जांच और 3,000 से अधिक सफल सर्जरी की जा चुकी है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची हैदराबाद और रांची दिल्ली उड़ानें तथा इंडिगो की रांची कोलकाता और रांची हैदराबाद सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की रात वाली फ्लाइट भी 1 जुलाई से बंद होगी, जबकि देवघर बंगलुरु फ्लाइट अब सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी, जो पहले प्रतिदिन उपलब्ध थी। गिरिडीह पहुंचे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने पिछले 12 वर्षों को देश के लिए विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता का काल बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक परिसर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। कल तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय और ग्रामीण किसानों को सीधे शहरी बाजार उपलब्ध कराना है। नाबार्ड झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक दीप माला घोष ने बताया कि जनजातीय विकास परियोजना के तहत 50,000 परिवारों की आजीविका को इस पहल से सुदृढ़ किया जा रहा है।
2: आम महोत्सव का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है तो बाजार से इनको जोड़ना है ताकि उनका बिक जाए, लेकिन यहाँ की जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो कंपनियां हैं जो कि मैंगो जूस, मैंगो पल्प या मैंगो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी नजर में झारखंड आए कि यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और उनकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत जरूरी है, चाहे एक्सपोर्ट करना चाहे या उसको प्रोसेस करे।
0: लोहरदगा और गुमला जिलों में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा के मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से शादी समारोह में जा रहे 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। वहीं गुमला के पालकोट में बारात से लौट रही कार के पेड़ से टकराने से दूल्हे के पिता समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। विस्तृत विवरण के साथ रांची से हमारी संवाददाता।
3: इस बार योग दिवस पर राज्य में एक विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार कल रविवार की छुट्टी होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल सामान्य कार्य दिवस की तरह खुलेंगे। इस सामूहिक आयोजन में प्रदेश के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक साथ योग प्रोटोकॉल से जुड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के सभी ग्रामीण व शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष निःशुल्क योग शिविर लगाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित योग गुरु आम लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। लातेहार के टाउन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का समापन हुआ। लातेहार जिला पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन

0: समारोह में मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल ने कहा कि इस ड्यूटी मीट का मूल उद्देश्य पुलिस की पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना है।
1: त्रिदिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट पे पलामू क्षेत्र की थी, उस समापन हुआ जिसमें कि तीनों जिले के हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण शामिल हुए। ड्यूटी मीट का उद्देश्य यही होता है कि जो पुलिस की पेशेवर दक्षता है वो किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दोनों ने सीखा है, किस प्रकार से वो क्षेत्र में भी लागू कर पा रहे हैं।
0: टाटा स्टील ने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी के कैडेट्स आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए सम्मानित किया है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर पूरे 10 साल बाद इस प्रतिष्ठित खिताब पर दोबारा कब्जा जमाया। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकोम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता ने गंवाई जान। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग न जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है, पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही, और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है, और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें, और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं, और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहां का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहां पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीजों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर

0: ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मदन सिंह देव जी, प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामक

0: 89,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों

0: सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित

0: बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षाएं व्यवस्थाएं की गई हैं। इधर रांची समेत झारखंड के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो जिले के गोमिया पंचायत स्थित जलमीनार परिसर में एक नए इंटेक वेल और पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि गोमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कोनार नदी में निर्मित इस इंटेक वेल और नवीनीकरण परियोजना से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और नियमित पेयजल की सौगात मिली है।
1: समस्या था पेयजल का, डीएमएफटी मंथ से स्वीकृत करा करके इसका उद्घाटन किए हैं। लोगों को कोनार डैम का पानी मिले। पहले की जो योजनाएं थी, कई जगहों पर पानी का संचालन नहीं हो पाता था, बेहतर रूप से पानी नहीं जा पाता था। एडिशनल टंकी के बनने से अब गोमिया के आसपास के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा।
0: रांची के लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगालवासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुभकामनाएं देते हुए उनके राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण, सादगीपूर्ण जीवन तथा प्रेरणादायी नेतृत्व की सराहना की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए उनके योगदान को सभी के लिए अनुकरणीय बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कल मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में भी तैयारियां की जा रही है। माहिल स्थित योगाभ्यास केंद्र में योग प्रशिक्षक नमित नाग ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति की जीवन शैली स्वस्थ बनी रहती है।
2: आज के समय में योग की बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आज योग अगर है तो हम स्वस्थ हैं। इसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें, और हमें डेली कम से कम 5 से लेकर 15 मिनट तक जरूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम अभी 24 घंटा में लगभग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रहते हैं, तो हमें मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है और अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना है।
0: झारखंड हाईकोर्ट में नामकुम अंचल में जमीन म्यूटेशन दस्तावेजों में हेर फेर से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच की अनुमति देने पर 2 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कैबिनेट विजिलेंस विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश दिया कि वे अपने निर्णय से एसीबी को अवगत कराएं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई 2026 को होगी। स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के तहत सीसीएल ने बेहतर कल के लिए प्लास्टिक कचरा कम करना विषय पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया। इसका मकसद एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर सीआईपीईटी रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभावों, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा की और व्यवहारगत परिवर्तन व सामूहिक जनभागीदारी पर जोर दिया। मादक पदार्थों के खिलाफ जनजागरूकता अभियान को लेकर आज 5वें दिन हजारीबाग जिले के कई प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत 10 सांस्कृतिक दलों ने 20 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान लोगों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन चाहे कि
4: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहां झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जरा और आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुडू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
4: बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से, बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी
3: जाओगी, क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
3: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
3: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
4: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ जाओ जाओ।
4: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मोलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
3: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
4: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना।
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मालवीय की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: का।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।

0: जीत।
1: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
0: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
1: अच्छा, होगी कोई। हा? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट And in time, you will be a great poet, Bench.
1: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
0: हाँ?
1: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
0: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
1: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
0: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
1: नहीं,
0: कुछ भी नहीं समझते।
1: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
0: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती हैं। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
1: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जीनी।
0: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
1: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
0: बेंच,
1: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना, सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
0: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूं।
1: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
0: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
1: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
0: अच्छा, तो मैं जा रही हूं मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
0: हाँ मौसी, हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
0: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर यस मिस्टर थॉमसन मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम उसकी लिखी कविता।

0: कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
1: नहीं, पर मैं
0: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
1: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
0: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
1: यस सर।
0: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
1: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत, तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
0: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
1: ओके सर।
0: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
1: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी, यहाँ लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीकन नेशनल

0: नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद पेंच वहीं गया होगा।
1: ये मीटिंग कहाँ है?
0: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
1: मीटिंग, गुप्त समिति।
0: हाँ,
1: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
0: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
1: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंज जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा यह निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूं इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन हो सकता है?
4: कौन है?
3: अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
3: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने?
6: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया। चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: पकड़ो, ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
3: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए, पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
3: अच्छा, आता हूं।
7: हैंड्स अप।
3: आप लोग
7: चलो अंदर, देखो ये जल्दी, क्विक, कहां है ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्ते हैं?
3: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
3: जी, जेम्स पिस्से।
9: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
3: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
8: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
3: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
8: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
9: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
8: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
9: मिल गया सर,

0: लिया।
1: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: You are right.
1: सर, इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
0: तो मिस्टर जोसेफ पिट्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया? समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर,
0: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
2: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुसाया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
0: फिर झूठी कहानी करने लगा।
3: सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या हैं?
0: यू रास्कल!
2: सर, सर, जेम्स मेरी एकमात्र संतान है, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं?
3: बाबू, बाबू, तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
1: इसका ब्लैकी बिल्कुल खत्म कर डालूंगा।
0: ओप, चुडो, उसे मेरे पास दो। मिस्टर पिट्से, 1 से 10 गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेद कर पार हो जाएगा। और
3: बाबू, बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं, कभी नहीं।
0: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
2: नहीं नहीं नहीं, रुकिए साहब, रुकिए
3: बाबू, नहीं बाबू,
0: 7, 8, 9,
1: ठहरिए, हैंड्स अप, सॉरी बेंजामिन,
0: दैट ग्रेट पोएट, आई सी,
1: बिल्कुल नहीं ना, वरना गोली मार दूंगा।
4: बस रहने दीजिए, ज्यादा बहादुरी ना दिखाइए। टेनरी में कच्ची चमड़ी बदन पर लपेट कर पड़ा था और देख रहा था इन दो बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल कूद। खैर, छोड़ दीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूं आपको।
0: जरूर जरूर, आप ही तो बताएंगे, पर हां, सीधे साधे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू,
1: यस सर,
0: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना, इज डेंजरस।
1: यस सर।

0: मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना

0: जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप जो जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद। तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं हाँ। डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपने ही लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है। तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटोर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटोर हूं। मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है, अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा, और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं, तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है।

0: है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस, यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि गाने बड़े कठिन है, यानी कि
0: हाँ,
1: डांस इसका जो है
0: हाँ,
1: बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो
1: हाँ,
0: कठिन होते हैं, बिकॉज एक
1: उनका
0: बेंचमार्क कितना सेट किया ना उन्होंने,
1: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला, तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं। जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।
2: हे

मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा भर से झर झर झर झर झर झर झर झर नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई चली चली

0: वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है। और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं,
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने, तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूं विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल। तो मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको। तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है, उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है, तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है, तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया। आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, और अगर आपने नजरअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।

0: जो आपने बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं खुद का जरूर कहूँगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना, वो हमसे भी ज्यादा है। सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड। सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कांट प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट,

0: वो 5 दिन की होती है। सो इट इज़ सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए, तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, मैं तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें सर। नहीं, तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा। दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस इज लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक, इट वॉज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक एक अलग ही एक एक यू नो एक
1: ग्रेस
0: हाँ।
1: है।
0: एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली। अच्छा, ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट
1: वैसे भी
0: टाइम एक
1: ब्लैक
0: लड़की,
1: जो है, हाँ
0: हाँ सो व्हाइट इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंग्स उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा
1: जाहिर
0: है।
1: है
0: हाँ
1: जहां आपकी काम की सराहना भी हो रही है
0: हाँ,
1: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब
0: डूब
1: चुका
0: चुका
1: है।
0: है, तो मजा आता है काम करने का, और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता, हमें मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकेंडली मैं एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। He's that detailed. फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो there was a assistant only for the धनुची कि तुम्हें धनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों वो धनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और वो फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं, चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा और वो ले

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है।
1: करेक्ट।
0: लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम हैं।
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: यू नो, खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि यू नो फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया, अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए। जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। अब कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था, अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे अरमा है, मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर। ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूं। बहुत सारे चीजें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ।
0: एक तो बहुत इजी है।
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है मेरा।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं इन्हों पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना यू नो बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं मेन वन। मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस। आई मीन, अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एस्पेशली इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो जो मुझे यू नो जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं। मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो। और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे, अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड वाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन तीन चीजें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स मेक की एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट, इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी यू नो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चरें जब मैं देखता हूं तो मैं मतलब बोलता हूं कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में, कि आप इतने इतने इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है। तो वो एक अलग लेवल का।
0: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है।
1: हाँ।
0: सवाल ये ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद।
1: अच्छा।
0: और वो है कि शादी के बारे में।
1: देखिए, मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ को अगर एक एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और आल्सो कॉल माइसेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी, किसी के साथ के, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, यू नो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता। सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिकर ही नहीं करता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए। मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की यू नो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से।

0: एक और बात है
1: हाँ,
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ, ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है,
1: हाँ
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी
1: हाँ,
0: तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है,
1: हाँ
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे हैं, लोग लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें जो मैंने सीखा है, समझा है, दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे यू नो आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज यू नो हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हमें खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूं कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ हाँ हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो जो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
1: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आ

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: पे आया,
0: पे आया और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे, लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही endearing है। जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और जब सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा, तो बहुत सारे जो मकाम है ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: गीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से झरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के नीड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, और उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबां जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।
1: जब मोहब्बत जवान हो

साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमां, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

एक वादा धड़कनों में सुनाई देता है, एक इल्तिजा बांधी है सांसों की डोर से। तुम्हारी खुशबू आती है हवाओं में, तुम्हारा नाम गूंजता है फिजाओं में।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

सिर्फ उस रात का इंतजार जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बया हो जाए वो शबनमी एहसास। आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हीं कदमों की आहट लाई है।

खपत वो पाक जज्बा जिसके कदमों में छुप जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है, जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगा हर्ट्स पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:10 तक। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। चर्चा होगी सब्जियों की खेती आय का साधन, साथ ही चर्चा में सुनिएगा फसल चक्र क्यों आवश्यक। भेंट वार्ता आप सुनेंगे मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने की वैज्ञानिक विधि पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, कृषि विशेषज्ञ। भेंटकर्ता हैं प्रतिमा वर्मा। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 6:30 से। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर, आज का विचार में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। भेंट वार्ता आप सुनेंगे बीज भंडारण की वैज्ञानिक तकनीक पर। भेंट वार्ताकार हैं संजय कुमार राम, कृषि विशेषज्ञ लातेहार। भेंटकर्ता हैं रागनी कुमारी। आज का मौसम, आज का बाजार भाव और आज की नसीहत में आप सुनेंगे पशुओं के लिए हरा चारा का महत्व।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर गीत गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। आज के हमारे फनकार हैं हरिहरन। 7:45 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान जगत। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:10 पर विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम का भाग 20। इसे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 MHz पर प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

आज की शाम ये वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, युवा योग करें स्वस्थ रहें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। इसी कार्यक्रम में राजीव शरण की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, विषय होगा मोटापा का योग से उपचार, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भी औपचारिक व अनौपचारिक योग शिक्षकों और उत्साही लोगों के समूह ने 21 जून के अलावा भी अन्य तारीखों पर विश्व योग दिवस को विभिन्न कारणों के समर्थन में मनाया था। दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी ध्यान और योग श्री रविशंकर और अन्य योग गुरुओं ने पुर्तगाली योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल का समर्थन किया और 21 जून का दिन दुनिया के लिए एक योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सुझाव दिया था। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी। दोस्तों, योग बहुत हम सभी के लिए बहुत ही सहायक और फ़ायदेमंद है। सेहत की दृष्टि से देखें तो योग को हमें अपने जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हर चीज़ हमें बेहतर लगेगी। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो सब कुछ रहते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा महसूस होगा। इसलिए दोस्तों, योग को ज़रूर अपनाएं, जीवन में स्थान दें और हमेशा जो है आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया गया। मसौदे को व्यापक समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत 177 देश इस मसौदे के प्रस्तावक बने, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में अभी तक हुए किसी भी संकल्प में सर्वाधिक प्रस्तावकों की संख्या है। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आएं एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ग्यारह दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून
2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करने के बाद श्री रविशंकर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, किसी भी दर्शन, धर्म या संस्कृति के लिए राज्य के संरक्षण के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है। योग लगभग एक अनाथ की तरह अब तक अस्तित्व में था, अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता योग के लाभ को विश्व भर में फैलाएगी। श्री रविशंकर, तो दोस्तों हम थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें और जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत रहें, सभी का ख्याल रखें और योग को जीवन में स्थान दें। कम से कम योग करने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए अगर स्वास्थ्य है तो आपके पास सब कुछ है। दोस्तों स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं, इसलिए इसकी कद्र हमें हर हाल में करनी चाहिए और इसे जीवन में स्थान देकर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

जिस शरीर से हम जीवन भर काम लेते हैं, उस शरीर को सिवाय भोजन के हम कुछ नहीं करते हैं उसके लिए, तो शरीर के लिए व्यायाम करना और ये प्राण जो हमारे जीवन का आधार है इसके लिए प्राणायाम करना, फिर शरीर के जो मुख्य जोड़ हैं इनके लिए सूक्ष्म व्यायाम करना, फिर सूर्य नमस्कार थोड़ा, या यदि आप युवा हैं तो फिर तो थोड़ा दंड बैठक कर लेंगे। ये सब ऐसे कुछ क्रियाओं को करके आप चाहेंगे तो अपना एक जीवन शैली को नियमित कर लेंगे तो ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो आपको नहीं होगा। तो लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने के लिए भी सबसे पहले तो अपना जीवन नियमित करना और एक घंटा व्यायाम के रूप में, प्राणायाम के रूप में, सूक्ष्म व्यायाम के रूप में। अब व्यायाम क्या क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार के 12 पूज होते हैं, वो सूर्य नमस्कार के 12 पूज हम पुनः आपको एक बार आग्रह कर ले, जिनको प्राणायाम व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम आदि प्रशिक्षण लेना हो वो हमारे पलामू पतंजलि से संपर्क कर सकते हैं और हम उनको गांव में जाके इसकी पूरी विधिवत एक प्रशिक्षण देंगे 3 दिन 5 दिन का, वो भी निःशुल्क होता है वो हमारा प्रशिक्षण। ऐसे लाइफ स्टाइल जो डिजीजेज है, अब मोटापा को कम करने के लिए आपको व्यायाम अधिक करना होगा। अब मोटापा बढ़ने का कारण क्या होता है, एक शरीर में एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम होता है लिप्टिन। लिप्टिन मॉलिक्यूल्स के भीतर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और उसमें जो एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो लिप्टिन मॉलिक्यूल कहलाता है, उसमें हमको अधिक खाने की वो एक वेग आता है, हर वक्त हमको लगता है खाते रहना, उसके कारण फिर आपका मोटापा बढ़ जाता है और उसी का लिप्टिन मॉलिक्यूल का स्राव जब कम हो जाता है तो आपको फिर भूख नहीं लगती या फिर कुछ भी खा तो फिर शरीर में नहीं लगता। तो ऐसे कुछ अपने शरीर के भीतर की जो क्रियाएं होती हैं, अब जिनको मधुमेह हो गया, लाइफ स्टाइल डिजीज में सबसे गंभीर बीमारी इन दिनों, और वैसे कहा जाए तो मोटापा सभी बीमारियों की मां है, जिसको जननी कहते हैं ना, मां। जिसको मोटापा हो गया उसको डायबिटीज होगा, उसको हृदय रोग होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ेगा, सब प्रकार की, उसको थायराइड होगा, सब प्रकार की बीमारी, उसको कमर दर्द होगा, उसको घुटनों का दर्द होगा, सारी परेशानी उसको होने वाली है समझ लो। और यदि एक सिर्फ मोटापा को हम ठीक कर ले तो मोटापा को ठीक करने के लिए उसके लिए फिर अलग अलग हम लोग अभ्यास बताते हैं, योगिक जोगिंग के 12 पोज होते हैं, सूर्य नमस्कार होते हैं, फिर अलग अलग विधि से वो हम लोग मोटापा कम करने का व्यायाम के माध्यम से उसको मोटापा कम करते हैं, दंड बैठक करते हैं, थोड़ी दौड़ लगाते हैं। तो ऐसे लाइफ स्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए योग प्राणायाम का भी पूरा कपालभाति खूब करेंगे। कपालभाति जिनका मोटापा बहुत बढ़ गया वो 15-15, 20-20 मिनट लगातार मोटापा वो कपालभाति करेंगे। कपालभाति जो हमने कहा 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तो ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है वहां पे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो ये पाया कि कपालभाति के माध्यम से जब हम 1 स्ट्रोक करते हैं, 1 बार श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के भीतर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो 1 ग्राम बर्न हो जाता है, जल जाता है। हम शरीर के भीतर कैलोरी तो खा के बहुत पैदा कर लेते हैं लेकिन कैलोरी को बर्न नहीं करते हैं, जिसके कारण कि मोटापा हो जाता है और वो मोटापा बहुत सारे रोगों का कारण होता है। इन मोटापा को दूर करने के लिए भी आपको प्राणायाम करना है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, वाय, अग्निशार, और फिर इसमें कुछ ज्यादा हम लोग मोटापा कम करने के लिए थोड़ा शारीरिक अभ्यास को ज्यादा बताते हैं, वो शारीरिक अभ्यास को ज्यादा करना होगा। मधुमेह को ठीक करने के लिए थोड़े आसनों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें कि मंडूकासन के रूप में, मंडूकासन, कुर्मासन, मयूरासन, ये कुछ आसन है जिसके आसन के माध्यम से आप चाहें तो मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। गिलोय का सेवन करेंगे आप, मधुमेह नियंत्रित होगा। तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, ये सेवन करेंगे तो आपका मधुमेह नियंत्रित होगा। जामुन की गुठली का पाउडर, उसका सेवन करेंगे, मधुमेह नियंत्रित होगा। ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए योग के अतिरिक्त कुछ कुछ हम लोग घरेलू नुस्खों का भी प्रयोग करते हैं।

0: जिसके कारण से अब जो दर्द जो हमारी होती है, जिसको हमने कहा पीठ का दर्द, कमर का दर्द, वो तो गलत तरीके से उठने बैठने के कारण होता है, उसमें हमको कोई भी दवा हमारा काम नहीं करता। हाँ, थोड़ी मसाज की आवश्यकता होती है कभी, तो हम मसाज कर, अब मसाज करने का भी तरीका अलग अलग होता है। सामान्य रूप से हम लोग मांसपेशियों को इतना ऐंठ देते हैं, तोड़ मोड़ देते हैं कि वो दर्द और बढ़ जाता है। तो शरीर में मसाज करने का भी तरीका अलग अलग होता है, उसको भी ठीक से जानने की आवश्यकता है। और फिर उसके लिए कुछ ज्यादा आसन करते हैं, मरकटासन आदि, उससे हमारा फिर ठीक होता है। तो इस प्रकार से लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने के लिए अपने जीवन को नियमित कैसे करें, इसके कुछ विषय पे हम प्रकाश डालें। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे, और फिर यदि इस पे कुछ ज्यादा स्पष्ट मार्गदर्शन चाहेंगे या फिर प्रशिक्षण चाहेंगे, उसके लिए हम हर जगह उपलब्ध होते हैं। आज आइए अब हम लोग बात करते हैं जो अपने समाज के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिसको कि हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। सीनियर सिटीजन्स के पास आज समय की प्रचुरता है, समय उनके पास है। समय की वो नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, हम तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि इस समय का उपयोग पूरे जीवन काल तक, तो वो अपना सारा समय खुद पे ध्यान नहीं दिए या दिए, यह अब उनका अलग विषय हो सकता है, हम उस विषय में प्रवेश लेना नहीं चाहेंगे, वो एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है, कुछ लोग अपना ध्यान दिए होंगे। प्रायः हम अपना जीवन स्वयं पे कम ध्यान देते हैं, ये हर एक व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता होती है, और हम दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम एक परिवार के गार्जियन के रूप में हैं, तो हमारे बच्चे खाए कि नहीं खाए, हमारे घर में कौन लोग आ रहा है, कौन लोग जा रहा है, सबका ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप जब आप वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, तो ये सारी चिंताओं से मुक्त होके अब आप प्रयास कीजिए कि एकदम रोग मुक्त भी हो जाना है। तो वरिष्ठ नागरिक को तो भी प्रथम ये आवश्यकता है। वैसे भी जब आप बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो आपको निद्रा वैसे भी कम होती है, निद्रा कम आती है, बड़ी उम्र में नींद कम आती है, तो आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। सुबह उठ के प्रातः काल में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का सामान्य गति से ही अपना एक मॉर्निंग वॉक के नियम बना लें।
1: अभी आप सुन रहे थे राजीव शरण की वार्ता, विषय था मोटापा का योग से उपचार। और इसी के साथ दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

वक्त के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार आज निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को PPT के माध्यम से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण दे रहे थे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय

0: के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उली बगीचा पर्व आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सिंहभूम की सांसद जुबा मांझी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से किसानों का मनोबल ऊंचा होता है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक रांची समेत संताल और कोल्हान के इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पलामू प्रमंडल के जिलों समेत कई अन्य जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पलामू जिला साइकिलिंग एसोसिएशन और जिला प्रशासन के सहयोग से आज साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण और कृषकों भाइयों को हमारा नमस्कार। आज कार्यक्रम में मैं प्रतिमा आपके साथ और आज सबसे पहले बातें करेंगे सब्जियों की खेती आय का साधन। ग्रामीण भाइयों, सब्जियों की खेती किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए त्वरित और निरंतर आय का एक अत्यंत मजबूत साधन है। कम समय में तैयार होने वाली ये फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, भिंडी पारंपरिक अनाजों की तुलना में 20-35% तक अधिक लाभ देती है और पूरे साल आजीविका का एक बड़ा स्रोत भी है। सबसे पहले बातें करते हैं कि सब्जी खेती के लाभ क्या हैं और ये आय का मुख्य साधन क्यों है। लगातार और जल्दी आमदनी इसके कुछ लाभ हैं। सब्जियों की फसलें बहुत कम समय में यानी 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं, जिससे साल भर एक चक्र के रूप में लगातार नगद आय प्राप्त होती है। उच्च मुनाफा भी बहुत है इसमें। बाजार में ताजी सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है। उचित प्रबंधन से प्रति एकड़ यानी 1 लाख से 3 लाख तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। विस्तार और रोजगार भी इसके कुछ लाभ हैं। छोटे और सीमांत किसानों के अलावा युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन का भी यह एक बेहतरीन साधन है। झारखंड और अन्य राज्यों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बीज मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और लोन पर 50% से 90% तक की भारी सब्सिडी भी दी जाती है। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो इसे कई लाभ है, जैसे बहुत जल्दी और लगातार आमदनी, उच्च मुनाफा, विस्तार और रोजगार और सरकारी सहायता। तो कुछ उच्च आय देने वाली यानी अच्छी आय देने वाली प्रमुख सब्जियों की बात कर लें तो बेल वाली सब्जियां इसमें आप लगा सकते हैं, लौकी, तुरई, करेला, खीरा और ककड़ी, जो कम लागत और ज़्यादा उत्पादन देती हैं। नकदी सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी, इनकी मांग हमेशा उच्च रहती है। लाभ बढ़ाने के लिए कुछ आधुनिक तकनीकों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को ज़रूर होनी चाहिए, जैसे मल्चिंग और ड्रिप इरीगेशन। इसके इस्तेमाल से पानी की बचत होती है, यानी कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आप मल्चिंग और ड्रिप इरीगेशन से अपनी सब्जियों को उगा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। खरपतवार नहीं उगते इससे और उपज में 30-40% की तक की वृद्धि भी होती है। नेट हाउस या पॉली हाउस संरक्षित खेती के माध्यम से बेमौसम सब्जियां उगाकर सामान्य से कई गुना अधिक दाम यानी प्रीमियम प्राइस प्राप्त कर सकते हैं, सीधे बिक्री कर सकते हैं, यानी बिचौलियों को हटाकर सीधे खुदरा विक्रेताओं, सुपरमार्केट या स्थानीय मंडियों में बेचने से सीधा मुनाफा बढ़ता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन से अधिकतम आय आप कमा सकते हैं किसान भाइयों। कुछ जल्दी उगने वाली सब्जी भी आपको हम बता देते हैं, जैसे मूली। इसकी कुछ किस्में 25-30 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। अगर आप मूली के अलावा अन्य सत्य जल्दी तैयार सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप कुछ ये विकल्प चुन सकते हैं, जैसे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया और सलाद के पत्ते। माइक्रोग्रीन्स भी है, किसी भी हरी सब्जी के छोटे पौधे बहुत जल्दी से उगते हैं और कुछ ही हफ्तों में सलाद के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप अपने घर के बगीचे या गमलों में इन सब्जियों को उगाने की योजना बना रहे हैं तो आप ऐसे उपकरण भी ले सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे। और कुछ बारहमासी सब्जियों के बारे में आपको बता दें, वे पौधे हैं जिन्हें एक बार लगाने पर बार बार बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती और ये 2 साल से अधिक समय तक लगातार या मौसम आने पर उपज देते हैं। इनमें मुख्य रूप से सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, परवल, कुंदरू, अरबी और मालाबार पालक जो है ये बहुत जल्दी सब देते हैं। सहजन, इसे पेड़ के रूप में उगाया जाता है, यह भारत में सबसे लोकप्रिय बारहमासी सब्जियों में से एक है। इसकी फली, पत्तियां और फूल सभी अधिक पौष्टिक होते हैं। परवल यह कद्दू परिवार की बेल है जो कई सालों तक चलती है और गर्मियों में इसकी भरपूर पैदावार होती है। कुंदरू भी है, इसे टिंडली भी कहा जाता है, यह एक बहुत ही सख्त बेल है, इसे एक बार लगाने पर सालों साल सब्जी देती है। मालाबार पालक भी है, कोई साग के नाम से मशहूर, यह एक पौष्टिक और हरी पत्तेदार बेल है, यह गर्म जलवायु में बहुत अच्छी तरह से फैलती है। शतावरी यह विदेशी और अत्यधिक पौष्टिक बारहमासी सब्जी है, जिसे एक बार लगाने से लगभग 15-20 साल तक इसके तनों की फसल ले आ सकती है। अरबी, इसके कंद यानी जड़ और पत्तियां दोनों सब्जी के रूप में उपयोग में किए जाते हैं और यह सालों साल उगने वाला पौधा है। ऐसे ही शकरकंद भी है, यह भी ज़मीन के नीचे उगने वाली बारहमासी बेल वाली फल है और इस तरह की सब्जियों से आप कई सारे लाभ ले सकते हैं।
जुलाई अगस्त में बोई जाने वाली कुछ सब्जियों की जानकारी भी आपको हम दे दें। जुलाई अगस्त के महीनों में मुख्य रूप से मानसून की फसलें बोई जाती हैं। इस दौरान भिंडी, लौकी, करेला, तोरी, खीरा, कद्दू और टमाटर की बुआई अच्छी होती है। इसके अलावा अगस्त के अंत में फूलगोभी, गाजर और मूली जैसी सब्जियों की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं आप। मानसून में बोई जाने वाली कुछ सब्जियां हैं जैसे बेल वाली सब्जी, लौकी, करेला, तोरी, खीरा और कद्दू। फलियों वाली सब्जी जैसे भिंडी, लोबिया या बरबटी और ग्वारफली, और टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च भी आप लगा सकते हैं। अगस्त में बोई जाने वाली सब्जियाँ हैं पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियाँ जैसे मूली, गाजर और पालक, गोभी वर्गीय, फूलगोभी, पत्ता गोभी और टमाटर। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। बारिश के मौसम में जल भराव से फसल खराब हो सकती है, इसलिए खेतों या गमलों में पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लौकी, तुरई और जैसी बेल वाली सब्जियों को उपज बढ़ाने के लिए मचान या सहारे का उपयोग करें। तो हम बातें कर रहे थे सब्जियों की खेती आय का साधन कैसे है, और इसके बाद आपको एक लोकगीत सुनवाते हैं शहाबुद्दीन अंसारी की आवाज़ में।

0: अब ये हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे लोकगीत शहाबुद्दीन अंसारी की आवाज़ में। आइए आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने की वैज्ञानिक विधि। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जो कृषि विशेषज्ञ हैं चिया की पलामू के। किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, मृदा का संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम बातों पर जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि दिन प्रतिदिन भूमि की उर्वरा शक्ति घटने के मुख्य क्या कारण है?
1: मृदा का जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन क्षरण होते जा रहा है, तो मृदा के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें और उसकी उपयोगिता किसान के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि अगर मृदा ही नहीं रहेगी तो इस धरती पर कुछ जीवन संभव नहीं है। आज किसान भाई देख रहे हैं कि हमारे मृदा की जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खराब होते जा रही है, क्योंकि मृदा में जो हमारे फसल लेते हैं रासायनिक खाद वगैरह का उपयोग करते हैं, रासायनिक दवा का भी उपयोग करते हैं, तो इससे हमारे मृदा के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले जो मृदा हमारा जो था उसमें जो हम फसल लेते थे तो बिना रासायनिक खाद दिए हुए भी फसल अच्छी होती थी, लेकिन आज जो है हमारी मृदा ऐसी हो गई है कि अगर उसमें हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक और दवा का उपयोग न करें तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इससे यही किसान अनुमान लगा रहे हैं।

0: कि हमारे जो मृदा का जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन घटते जा रही है। तो इसके बनाए रखने का किसान के साथ एक ही उपाय है कि जो हमारा रासायनिक खाद और रासायनिक दवा और कीटनाशक का जो उपयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा को कम करते हुए हम जैविक खेती की तरफ किसान को आना चाहिए। अगर मृदा ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो उससे जो भी अनाज और जो भी खाने का जो पौधा हम ले रहे हैं उसमें भी जो है रासायनिक का उसमें गुण आ जाएंगे और वो हमारे स्वास्थ्य के भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ भी रहा है। तो इसका एक ये भी कारण है कि हमारा मृदा ही स्वस्थ नहीं है। इसलिए मृदा स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि किसान भाई उसमें जैविक खेती की तरफ ज्यादा लें। और जैविक खेती की जहां की बात आती है तो जैविक खेती,
1: हम आपको यहां पे एक रोकना चाहेंगे कि जैविक खेती की आप बात कर रहे हैं, जैविक खेती किसान किस तरीके से करें कि उनको ज्यादा फायदा हो, उर्वरा शक्ति और बढ़े?
0: जी हाँ, कुछ दिन पहले हमारा ये था कि किसान हमारे देश का जो प्रोडक्शन था कम था और हमारी जनसंख्या ज्यादा थी तो उसकी भर खाने की पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाए जिसमें हम रासायनिक खाद और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी फसल के वैरायटी को चेंज किए और उससे फसल का उत्पादन बढ़ाए। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज जो है परिस्थिति अलग है। हमारा किसान की आमदनी बढ़ना है तो उत्पादन क्षमता को नहीं देख करके वो टिकाऊपन की जरूरत है और ये टिकाऊपन तभी आएगी जब हमारा मृदा स्वस्थ रहेगा। मृदा स्वस्थ रहने का कारण है कि उसमें हम जैविक खेती करें। तो जैविक खेती के लिए किसान भाई जो हमारे पौधा का रिक्वायरमेंट है उसका जो पौष्टिक तत्व की जरूरत है उसको हम जैविक से दे सकते हैं। जैसे यूरिया का उपयोग किसान भाई करते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हवा में भी नाइट्रोजन काफी है। हवा में 78% नाइट्रोजन है लेकिन वो फसल उपयोग उसका नहीं करता है। तो हम किसान भाई को ये सोचना है कि उस जो हवा में 78% नाइट्रोजन है उसको खेत में कैसे उपयोग लायक बनाएं। तो इसके लिए आपका बहुत सारा है जीव, पहले हमारे खेत में बहुत सारे जीव रहते थे, बहुत सारे जीव जो है हमारे खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं और किसान भाई का दोस्त है। लेकिन आज जो है रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करने से वो सारे जीव समाप्त धीरे धीरे होते गए हैं और ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम रासायनिक खाद के उपयोग को कम करके अगर ये जीव की संख्या को बढ़ाएं, जैसे राइजोबियम जीव है, एक राइजोबियम जीव है जो प्रकृति से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, अपने उपयोग के लिए ग्रहण करता है और वो जो उससे प्राप्त होता है नाइट्रोजन वो मिट्टी में रहता है और पौधा को मिलता है। और ये नाइट्रोजन जो होता है वो टिकाऊपन भी होता है। लेकिन किसान यूरिया के अगर रूप में नाइट्रोजन देते हैं लेकिन वो नाइट्रोजन टिकाऊ नहीं होता है। अगर आप ज्यादा खेत में डाल देंगे तो आपका फसल बर्बाद भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये राइजोबियम से अगर राज्यों में जीव जो है वो अगर प्रकृति से नाइट्रोजन ग्रहण करके खेत में देता है तो वो टिकाऊ भी होगा, एक फसल को मिलेगा। अगर बच जाता है तो वो जमीन में पड़ा रहेगा और दूसरे फसल को मिलेगा। इस तरह से
1: आपके कहने का मतलब है कि जैविक खेती किसानों के लिए हर तरह से उपयोगी है।
0: हर तरह से उपयोगी है।
1: और अगला सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए हमारे किसान क्या करें?
0: जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मृदा की जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, धीरे धीरे घट रही है। धीरे धीरे घट रही है क्योंकि पहले लोग, आप जाने तो पहले हम लोग खेत को एक बार सिंचाई करते थे तो करीब एक सप्ताह के बाद ही उसमें सिंचाई करने की जरूरत होती है। लेकिन आज जो है, आज सिंचाई किए तो दो दिन के बाद फिर हमको सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। तो कहने का ये अर्थ है कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो धीरे धीरे घट रही है। किसान भाई जल धारण क्षमता से नहीं समझते होंगे लेकिन ये अगर एग्जाम्पल दिया है मैंने, इससे आप समझ सकते हैं। जल धारण क्षमता घटने का अर्थ ये हुआ कि मिट्टी में जल को पकड़ के रखने की शक्ति कम होते जा रही है। एक कम होने का कारण, एक ही कारण है कि रासायनिक खाद का उपयोग। रासायनिक खाद के उपयोग करने से हमारी मिट्टी जो है धीरे धीरे हार्ड होते जा रही है। हार्ड होने के कारण जो है उसको जल धारण क्षमता जो है वो धीरे धीरे घट रही है। तो जल धारण क्षमता को बनाए रखने के लिए किसान से यही मैं कहना चाहूंगा कि वो रासायनिक खाद के जगह पर जो है आप कंपोस्ट डालें, बर्मी कंपोस्ट डालें। तो अगर ये बर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट डालते हैं या जैविक खेती करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो मिट्टी की जल धारण क्षमता वो बन जाएगा। जैसे आप किसान ऐसा देखते भी होंगे, जिस खेत में आप गोबर की खाद ज्यादा डालते हैं तो आप वहां की मिट्टी भुरभुरा भी रहती है, वहां के सॉइल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और आपकी जल धारण क्षमता भी बढ़ी जाती है। तो ऐसे खेत में आप अगर एक बार सिंचाई करते हैं तो एक सप्ताह के बाद भी सिंचाई करेंगे तो पौधा नहीं मरेगा, माने जल उसमें रहेगा, अर्थात जल मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है
1: जी। और मृदा क्षरण से बचाव के लिए हमारे किसान क्या करें?
0: जी हाँ, किसान भाई की सारे कष्ट का जड़ एक ही है कि रासायनिक खाद का उपयोग, क्योंकि रासायनिक खाद का उपयोग करने से हमारी मिट्टी जो है हार्ड होते जा रही है। आप किसान भाई, ऐसे हम समझाते हैं किसान भाई को कि आप एग्जाम्पल लेते हैं कि यूरिया ही देते हैं खाद, यूरिया खाद देते हैं तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए देते हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे किसान भाई कि जो यूरिया का एक बोरी रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो आप देखेंगे बोरे पर तो उसमें लिखा रहता है 40% नाइट्रोजन, अर्थात अगर 100 kg आप यूरिया देंगे तो 46 kg ही नाइट्रोजन मिलेगा और बाकी जो 54 kg है तो 54 kg क्या है, इस किसान नहीं समझ पाते हैं। तो ये 54 kg जो फिलर मटेरियल है, जो जो 46 kg नाइट्रोजन है उसको पकड़ के रखने के लिए 54 kg उसमें एक फिलर मटेरियल मिला जाता है जो हमारा कोई उपयोग नहीं है। तो वही अगर खेत में जा करके जो है हमारी मिट्टी को हार्ड बनाते जा रही है, वो जो फिलर मटेरियल है वो मिट्टी को हमारे हार्ड बनाते जा रही है, और हार्ड जब मिट्टी बन रही है तो जो बारिश की पानी आ रही है वो बारिश की पानी नीचे रिस करके नहीं जा रहा है, तो बारिश के पानी रिस कर नहीं जा रहा है तो क्या होगा कि जमीन पर एक जमा होगा और धीरे धीरे एक छोटा धार बन बन करके एक बड़ा धार बनते जाएगा, और बड़ा धार बन करके वो मिट्टी को कट करेगा। मिट्टी को कट करने के साथ साथ मिट्टी को तो कट करेगा ही, लेकिन मिट्टी को कट करके आपका जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी का जहां जगह है उसको भी भरते जाएगा, जैसे आहार पोखर को भी धीरे धीरे भरते जाएगा, और एक समय है कि वो जो आपको पानी जमा करने का जो सोर्स है स्रोत है वो भी धीरे धीरे भर जाएगा। एक तो दूसरा घटा हुआ कि मिट्टी कटा हुआ, दूसरा आपका जो पानी जमा करने का सोर्स है वो भी धीरे धीरे भरते जा रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम होगा। दूसरा मिट्टी कटाव का कारण ये है कि आप गांव देहात में, गांव में किसान भाई जो करते हैं अपने खेत के मेड़ को मजबूत नहीं रखते हैं। अच्छा। धीरे धीरे जो क्या होता है कि मेड़ को काटते काटते पतला कर देते हैं, तो क्या होता है कि एक तो आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण मिट्टी हार्ड हो गई है, एक आप मेड़ को भी मजबूत नहीं रखे हैं, इससे क्या कारण क्या होता है, वो बारिश की पानी एक खेत में जमा होता है थोड़ा सा और आपका जो मेड़ है वो मेड़ नहीं मजबूत है तो एक मेड़ को तोड़ करके दूसरे खेत में जाता है, दूसरे खेत में जाने से पानी जो है और मोटा हो जाता है, और मोटा होने से वो धीरे धीरे और उसका कटाव की शक्ति बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो ज्यादा कटाव करने लगता है, तो पानी की धार जैसे जैसे मोटा होगा वैसे वैसे ज्यादा कटाव करेगा और वो कटाव करके फिर वो मिट्टी को काट करके अपना जो है दूर ले जाता है। तो आप ये किसान भाई जानते हैं कि मिट्टी का जो ऊपरी सतह है वो भी उपजाऊ है, ऊपरी सतह काफी उपजाऊ है, और ऊपरी सतह ही अगर कट के बर्बाद हो जाती है तो वो आपका एक खेत धीरे धीरे वो बंजर जैसा हो जाएगा, उससे उत्पादन ज्यादा नहीं आएगा, और दूसरी की आपका जो पानी का सोर्स वो भी भरते जाएगा। किसान भाई जानते भी हैं कि एक इंच भी मिट्टी बनाने में हजारों वर्ष लग जाती है, तो मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए किसान भाई को दो काम जरूर करना चाहिए कि एक तो रासायनिक खाद का कम उपयोग करें, दूसरी कि अपने खेत के मेड़ को भी मजबूत रखें जिससे कि पानी हो तो खेत में जमा हो और धीरे धीरे रिस करके नीचे जाए जिससे कि आपका पानी लेवल जो है वो भी आपका बना रहे।
1: किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी आशा है आप इसे जरूर लाभ उठाएंगे। आप थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को मृदा संरक्षण से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: ग्रामीण भाइयों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने की वैज्ञानिक विधि, भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। बात करते हैं अब फसल चक्र क्यों आवश्यक है।

की फसल उगाने से मिट्टी में कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल बदलने से पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, यानी फसल चक्र में दलहनी या फलीदार फसलें शामिल करने से वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिर होती है, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। कीटों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है। ग्रामीण भाइयों, लगातार एक फसल बोने से उस फसल विशेष के कीट और बीमारियां पनपने लगती हैं। फसल चक्र अपनाने से उन कीटों और रोगजनकों का जीवन चक्र टूट जाता है, जिससे नुकसान कम होता है। खरपतवारों की रोकथाम भी होती है। अलग अलग फसलों की बढ़वार और पत्तों का आकार अलग होता है, जिससे खरपतवारों यानी घास फूस को पनपने का मौका नहीं मिलता है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दलहनी और अन्य फसलें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है और उसकी पानी सोखने की क्षमता में सुधार होता है। उत्पादन और आय में भी वृद्धि होती है। इन सभी लाभों के कारण भूमि की सेहत अच्छी होती है, फसलें स्वस्थ होती हैं और किसानों की पैदावार के साथ साथ आर्थिक लाभ में भी बढ़ोतरी होती है।

फसल चक्र है क्या? आपको मैंने हमने बताया, फसल चक्र एक सदियों पुरानी कृषि पद्धति जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य को अनुकूलित करने और कीटों और खरपतवारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और समग्र कृषि दक्षता को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अपने जटिल फसल चक्र प्रणाली विकसित करते समय विश्वसनीय समाधानों को जरूर शुरुआत करें। इसकी एक ही फसल की खेती और दो साल के फसल चक्र के नकारात्मक परिणामों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है ये। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल की खेती करने से बचें और समय और स्थान के अनुसार अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाएं। साथ ही बहुवर्षीय फसल चक्र रणनीतियों को भी लागू करें। खरपतवारों की समग्रता कम हो सकती है, नाइट्रोजन सुनिश्चित हो सकती है, खेत में रोगजनकों की संख्या नियंत्रित हो सकती है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का संचय भी होता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और फसल चक्र अपनाते समय कई बातों का ध्यान रखें और फसल चक्र कई मायने में लाभकारी है किसान भाइयों। तो हम बातें कर रहे थे फसल चक्र की। हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, हमें दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ में हर्ज पर। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार। झारखंड के मेदिनीनगर पलामू में आज बातें करेंगे।

समय कृषि कार्य की, तो सबसे पहले बातें इसकी। और जून के इस मौसम में हम पलामू में खरीफ फसलों की तैयारी और बुआई का काम चल रहा है। इस दौरान धान की नर्सरी तैयार करने, मक्का और सब्जियों की बुआई और खेतों की मेड़बंदी जैसे प्रमुख कृषि कार्य करने चाहिए ताकि बारिश का भरपूर लाभ आप मिल सके। कुछ मुख्य फसलें जो आप उगा सकते हैं हम आपको बता दें। धान की नर्सरी आप लगा सकते हैं। यदि आपने धान की नर्सरी यानी बिचड़ा तैयार नहीं किया है तो जून के इस महीने में इसे तुरंत पूरा करें। संकर किस्मों की रुपाई के लिए यह समय सबसे उत्तम है। संकर यानी हाइब्रिड मक्का की बुआई भी आप कर सकते हैं। संकुल और संकर मक्का जैसे शक्तिमान एक कंचन की बुआई 25 जून तक अवश्य पूरी कर लें। अरहर की बुआई कर लें। सिंचित क्षेत्रों में अरहर की बुआई मानसून की पहली बारिश के साथ शुरू करें। कुछ मौसमी सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए आप भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला, गिलकी और मूली की बुआई कर सकते हैं। बैंगन, मिर्च और अगेती फूलगोभी की रुपाई के लिए खेतों को तैयार करें। खेत प्रबंधन का काम करें जैसे मेड़बंदी कर लें। खेतों के चारों ओर मजबूत मेड़बंदी करें ताकि खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह न सके और बारिश का पानी खेत में ही जमा हो सके। गोबर या कंपोस्ट खाद बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई कर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह मिला लें। बीज उपचार भी कर लें। किसी फसल के बीज को बोने से पहले फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित जरूर करें। पशुपालन और हरे चारे जैसे ज्वार, लोबिया और चरी की बुआई करें ताकि बारिश के मौसम में चारे की कमी ना हो सके।

0: भारतवर्ष में धान की खेती लगभग 25% कृषि योग्य भूमि पर की जाती है। कार्बोहाइड्रेट की भोजन की आपूर्ति के लिए चावल के रूप में यह मुख्य भोज्य पदार्थ है। इसके लिए सबसे पहले आप कुछ प्रजातियां हैं जो आप लगा सकते हैं, नरेंद्र नरेंद्र आदि सुगंधित प्रजातियां, ऐसे पूसा बासमती बासमती हाइब्रिड किस्में हैं इसकी, ये सुगंधित प्रजातियां हैं जो आप लगा सकते हैं। भूमि की चुनाव कर लें। धान की खेती के लिए प्राय समतल दोमट से भरी दोमट चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। नीची ऊंची जमीन में भी यह उगा सकते हैं आप इसे। नर्सरी प्रबंधन कर लें। एक हेक्टेयर खेत के लिए एक हेक्टेयर नर्सरी बीज डालने से पहले नर्सरी की ज़मीन में एक टन खड़ी खाद 50 किलोग्राम SSP और 50 किलोग्राम MOP मिला दें। इस बीच खेत को 1% नमक के घोल में तैयार कर लें, जिससे हल्के रौगिक बीज तैयार हो जाए। 2-3 बार साफ पानी से धोकर बीज का शोधन करें। बीज शोधन के लिए प्राय 4.5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर लें। तो कीट प्रबंधन भी इसके लिए कर लें। हमारे देश में कपास के बाद धान की फसल में सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस फसल में अनेकों कीट और रोग लगते हैं जो उपज को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे किसान भाई उनकी मेहनत और लागत का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसे भी आप जरूर इसका ध्यान रखें। किसान भाइयों, हम बातें कर रहे थे समसामयिक कृषि कार्य की, लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
5: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप तमाम किसान भाई बहनों का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी में। और अब आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं, विषय है बीज भंडारण की वैज्ञानिक तकनीक। भेंटवार्ताकार है संजय कुमार राम, कृषि विशेषज्ञ लातेहार। बातचीत कर रही है रागनी कुमारी।
4: आपका कार्यक्रम किसान वाणी में नमस्कार।
5: नमस्कार
4: संजय जी, बीज भंडारण से पहले हमारे किसान भाइयों को कौन सी मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है?
5: जी, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसानों के लिए हम मुद्दा रहता है बीज भंडारण, और किसान भाई अच्छा पैदा लेते हैं, लेकिन जब भंडारण करते हैं तो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि बीज बहुत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो किसान भाई, इसको जब बीज भंडारण जब करने जा रहे हैं आप, तो तीन चार चीज़ें ऐसे मुख्य बातें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो है कि जो भी बीज है आप भंडारण कर रहे हैं, तो बीज में जो नमी होती है उसको 10% से नीचे होनी चाहिए। अब हम लोग बात ये सोचने में आ रही है कि 10% से नीचे हम कैसे समझें। तो किसान भाई देखिएगा, जब मक्का हो या कोई भी फसल आप गांव में करते हैं, अरहर वगैरह है, तो सुखा के रखते हैं, तो उसमें देखते हैं किसान भाई के पास एक टेक्निक है कि दांत तले उन लोग चबा के देखते हैं कि कट से किया, तब समझते हैं कि अच्छा सूख गया है, और कष्टा जाता है तो समझें कि नहीं अभी नहीं सूखा है। तो हमें ये कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुखा करके और एकदम तेज़ धूप में सुखा करके हम बीज को रखें। ऐसा नहीं है कि तेज़ धूप में रखने से हमारा बीज नुकसान हो जाता है या फिर जन्मने में, आने वाला समय में जन्मने में कोई समस्या आती है, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमको नमी कम से कम बना कर रखना है। साथ साथ जो आप खेत में, आप ये किसान भाई सोचें कि हम बीज अच्छा से सुखा कर कोठी में, बोरा में या किसी चीज़ में रखते हैं, तो वहाँ कीड़ा कहाँ से आ जाता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन किसान भाई, आप अगर गौर से थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचेंगे तो अपने आप सबका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिएगा कि हम लोग बीज हैं कि खेत खलिहान में दौते हैं और वहीं पर इकट्ठा करके और फटक करके हम लोग घर में रखते हैं, तो वहाँ तो है कि गांव में है कि क्या है कि हमको है कि नीचे ही ज़मीन में सुखाते हैं, डेली बटोर के जमा भी करते हैं, इस तरह 2-3 दिन सिखाते हैं, उसके बाद में जमा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कीड़े के अंडे हैं कि जो आपके आंगन में भी रहते हैं और बीज के साथ वहाँ आपको साथ चले जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप जब कोठी में रखने जा रहे हैं तो, या फिर कोई भी चीज़ में, तो कोठियाँ मान लीजिए, तो कोठी मिट्टी का बना होता है और उसमें है कि अंदर में अगर ज़मीन में यानी मिट्टी में नमी है तो वहाँ भी कीड़े पहुँच ही जाएँ, क्योंकि ज़मीन में नमी जहाँ मिलेगी वहाँ पर वो पनप जाएँ और तुरंत जब पनपेंगे तो तुरंत अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और वहीं पर दाना को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम देखे हैं गाँव में कुछ किसानों के यहाँ कि अंदर में है कि पहले कि कूड़ा करकट रख के उसमें आग लगा देते हैं ताकि अंदर में जला भी जितना भी झोली मकड़ी हो या कोई कीड़ा कंडा हो या जो भी जी नमी हो वो हीट हो जाएगा, या फिर उसको झाड़ करके हटा देते हैं और उसके बाद बीज रखते हैं। साथ साथ ये देखना है कि जब आप रखने जा रहे हैं तो उस समय क्या करना है कि बीज में थोड़ा सा ये आप मालाथियन एक पाउडर है या फिर नीम को पत्ता है, नीम पत्ता को ढंग से सुखा दीजिए और सुखा करके चूर्ण कर लीजिए और उसके साथ भी आप बीज रखेंगे तो कोई कीड़ा नहीं लगेंगे। साथ साथ ये भी है कि अगर बोरी में आप रख रहे हैं तो बोरी में रखने के पहले क्या करना है कि जो बोरी है, तो मान लें कि नया बोरी है तो भी या पुराना बोरा है तो भी, उसको क्या करना है कि मालाथियन पाउडर ले लीजिए, 25-30 रुपये किलो मिलती है, और उसको एक बाल्टी में मान लें कि 10 लीटर पानी है तो उसमें है कि 100-200 ग्राम डाल करके, 100 ग्राम ही डाल करके उसको घोल बना लीजिए, और घोल बनाने के बाद में जो बोरी है उसको डाल दीजिए और 10 मिनट तक रहने दीजिए और उसके बाद निकाल करके उसको सुखा दीजिए। कहने मतलब कि जो भी बोरी में अगर भी कोई कीड़ा या कोई पहले से मौजूद होगा तो वो दवा है कि मार दिया, और साथ साथ है कि जितना भी बोरी है धागा है उसमें सब में दवाइयाँ चिपक जाएंगी, कोई भी बाहर से जो कीड़े आएंगे वो उसको है कि अंदर घुसने नहीं देगा ना नुकसान करने देगा। और साथ ही साथ ये भी है कि जब आप रख रहे हैं तो 3-4 चीज़ बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। पहले जो भी बीज रखते हैं उसका नमी कम रहनी चाहिए, 10% नीचे रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप कोठी में रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छा से जला वगैरह करके, और रख भी रहे तो उसमें मालाथियन पाउडर हुआ या फिर उसमें नीम जो पत्ता है उसको सुखा लीजिए, उसका चूर्ण बना करके साथ में रखें। अगर बोरी में रखते हैं तो बोरी को मालाथियन पाउडर से पानी में घोल बना करके और बोरी को डाल करके सुखा लीजिए, सुखाने के बाद ही उसमें रखिए। साथ साथ है कि आप बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं कि बीज को पुआल का पोड़ा बना कर भी रखते हैं, तो पुआल का पोड़ा बना करके यानी उसको मेठी या कुछ बोलते हैं गाँव में, तो उसको है कि बना कर रखते हैं तो ठीक है रखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुआल का बोरी बनाते हैं उसमें भी मालाथियन पाउडर का है कि एक बार है कि पानी के माध्यम से उसको पुआल को भिगा दीजिए और उसी को पूरा पूरा सूखने दीजिए, और सूखने के बाद में है कि पूरा पुआल बना करके अब उसमें बीज रखिए, कहीं कोई नुकसान होने की बात नहीं है।
4: ये तो हुई भंडारण से पहले की बात, और भंडारण के बाद हमें क्या करना चाहिए?
5: भंडारण के बाद में देखिए पर हमको है कि हाथ लगा करके या फिर टॉर्च वगैरह किसी चीज़ से हमको घर में देखती रहनी चाहिए कि हमारा कोई बीज नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर बीच में यानी कि 15 दिन 20 दिन या एक महीना पर हमको बीच में हाथ डाल करके देखती रहनी चाहिए। साथ साथ ये भी है कि अगर किसी तरह का बीज में अगर उसमें लग गई है तो तुरंत हम फिर देखेंगे कि उसमें कोई पौधा से बना हुआ दवा का उपयोग करेंगे तो जल्दी नहीं ठीक होगा, हमको कीटनाशी दवा का ही उपयोग करना होगा। और उसमें है कि बहुत सारे बाजार में मिलते हैं कीटनाशी दवा, लेकिन हम कीटनाशी दवा ज़्यादा जो रासायनिक दवा है उसको ज़्यादा हम डालने के लिए नहीं किसानों भाई को कहते हैं, क्योंकि उसका बहुत सा साइड इफेक्ट है। और दूसरी चीज़ अगर नहीं मानता है तो रासायनिक दवा का उपयोग करके हम बीज को रख रखाव करेंगे और बचाव करेंगे। और साथ साथ अगर हम किसान भाई आपको हम दावा करते हैं कि आप अगर 7 से 8% बीज में नमी अगर होगा तो कतई आपके खेत जो बीज भंडारण कर रहे हैं उसमें कतई कीड़ा कभी नहीं लगेंगे।
4: जी हाँ, भंडारण के लिए जो भंडार गृह है उनके ढांचे कैसे होने चाहिए?
5: ढांचे तो कई प्रकार के बनते हैं, आपका जरूरत के हिसाब से किसान भाई बनते हैं। जैसे एक अगर वैज्ञानिक तरीके से बोलिएगा तो एक टिन से बना हुआ, चदरा से बना हुआ पूसा बिन है। बिन में अगर आप हैं कि ढंग से मालाथियान को क्या करना है कि घोल बना लीजिए 5 लीटर पानी में 2 ग्राम या 10 ग्राम डाल करके, और जो बोरी जो कपड़ा है कपड़ा को उसमें डाल कर भिगा लीजिए, और जितना भी पूसा बिन यानी टीन का अगर चदरा या कोई ड्रम में रखना चाहते हैं तो उस मालाथियन पाउडर को भिगा करके कपड़ा से और उसी से है कि पूरा बाहर भीतर चारों तरफ पोछ ले। पोछने के बाद में ड्रम को थोड़ा ढंग से सूखने दे, और सूखने के बाद में है कि उसमें डाल करके रखिए, किसान भाई उसमें एक भी बीज खराब होने की संभावना नहीं है।
4: बेशक किसान भाइयों, इस प्रकार अगर हम वैज्ञानिक विधियां से बीज भंडारण करते हैं तो निश्चय ही हमें फसल बीज को काफी दिनों तक महफूज रख सकते हैं। संजय जी, आप हमारे किसानवाणी कार्यक्रम से जुड़े और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। विषय था बीज भंडारण की वैज्ञानिक तकनीक। भेंटवार्ताकार थे संजय कुमार राम, लातेहार कृषि विशेषज्ञ। बातचीत कर रही थी रागनी कुमारी। और अब बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की। आज की बात में इसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। ये एक उन्नत सिंचाई तकनीक है। इसमें पानी और पोषक तत्वों को पाइपों के छोटे छोटे छिद्रों यानी ड्रिपर्स द्वारा सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद के रूप में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की भारी बचत होती है और उपज भी बढ़ती है। इसके कई लाभ हैं जो आपको बता दें। लगभग 60-70% पानी बचता है क्योंकि पानी वाष्पीकृत नहीं होता और बहकर बर्बाद नहीं होता। सीधी जड़ों तक पानी आता है। पानी सीधे पौधे की जड़ तक पहुँचते, इससे खरपतवार नहीं उगते। खाद की बचत। पानी के साथ तरल उर्वरक भी सीधे जड़ों में दिया जा सकता है जिससे खाद की मात्रा कम लगती है। ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए भी उपयुक्त है। इसे पथरीली ढलान वाली और असमतल जमीन पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। फसलों के अनुसार नियंत्रित पानी मिलने से उपज 20-30% तक बढ़ जाती है। कुछ खास उपकरण भी हम आपको बता दें, जैसे जल स्रोत, ट्यूबवेल, कुआं या तालाब, पंप और मोटर, पानी के दबाव को मेंटेन करने के लिए फिल्टर, पानी या मौजूद कचरे को साफ करने वाली छन्नी ताकि पाइप के छेद बंद ना हो, पानी को खेत तक ले आने वाले पीवीसी और एचडीपी पाइप, लिटरल पाइप, पौधों की कतारों के पास बिछाई जाने वाली पतली पाइपें आपको चाहिए, ड्रिपर्स उत्सर्जक भी चाहिए जैसे लिटरल पाइपों पर लगे नोजल जो बूंद बूंद करके पानी टपकाते हैं। कुछ लागत और सरकारी सहायता भी आपको मिल जाती है। जैसे एक एकड़ खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने का खर्च लगभग 50,000 से 1 करोड़ के बीच आ सकता है। यह पौधों के बीच की दूरी और पाइप की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस पर 70-90% तक भारी अनुदान या सब्सिडी प्रदान करती है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और अपने खेत में लगाएं इसे।

सिंचाई की नवीन पद्धति जो बूंद बूंद सिंचाई की बातें हमने की, उसे पौधे की किस्म, उसकी आय की नापी, क्षेत्रफल, स्थान विशेष की भूमि और जलवायु संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पौधों की वास्तविक जल मांग के अनुरूप पौधों की प्रभावित जड़ क्षेत्र में देते हैं। जरूरत पड़ने पर घुलनशील पोषक तत्वों और रासायनिक खाद भी पानी में घोलकर पौधों की जड़ों तक पहुँचाई जा सकती है। इस पद्धति में पानी की मात्रा नालियों के द्वारा जल स्रोत से पौधों की जड़ों तक विशिष्ट प्रकार की उत्सर्जक युक्ति ड्रिपर्स, माइक्रो स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रेयर आदि द्वारा नियंत्रित की जाती है। भूमि, स्थान विशेष और फसल की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रायः ड्रिपर्स, माइक्रो स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रेयर, बबलर, वाइबावॉल और अन्य प्रकार की उत्सर्जक युक्ति का प्रयोग करते हैं। यह पद्धति मुख्यतः फलों, बागानों, कतारों में बोई जाने वाली सब्जियों और गन्ने की सिंचाई में उपयोगी पाई गई है, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। ड्रिप सिंचाई पद्धति में जल स्रोत से जुड़ी हुई प्रारंभिक छन्नी, द्वितीयक छन्नी और इससे निकली हुई पीवीसी या फिर एचडीपीई की मुख्य तथा सहायक नालियां, जिसे पाइप भी कहते हैं, खेत में भूमिगत बिछाई जाती हैं। सहायक नालियों से पतली लेटरल नालियां 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर व्यास की सीधी नालियों में कतार के वृक्षों से होती हुई जमीन के ऊपर या नीचे फैलाई जाती हैं। तो जो ये ड्रिपर्स हैं, ये सीधे पतली नलिकाओं द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ क्षेत्र में पानी बूंद बूंद के रूप में सिंचाई होती है। कुछ ड्रिपर्स नालियों में सीधी लाइन में लगे होते हैं। औसतन 30-50% पानी की बचत, इस बचे पानी से 30-50% ज़्यादा जमीन की सिंचाई की संभावना रहती है। औसत 10-20% उपज में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार होता है। पार्टिकेशन यानी उर्वरकीकरण द्वारा उर्वरकों, पोषक तत्वों और दवाओं का समुचित उपयोग भी इससे कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण होता है। उबड़ खाबड़ और क्षारीय जमीन में भी उपयोगी है। अगेती फसल प्राप्ति में उपयोगी है। इसकी देखभाल करना आसान है। रासायनिक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। मजदूरी और अन्य खर्चों में कटौती भी हो सकती है। समय की बचत होती है। खारे पानी में ये कारगर है और ऊर्जा की बचत भी होती है। और ड्रिप सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इसके संचालन और रखरखाव के बारे में भी आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। प्रतिदिन फसल को पानी देने से पहले पंप को चलाकर 5 मिनट तक बैकवॉश करें। बैकवॉश यानी पानी के सामान्य प्रवाह को उल्टी दिशा में ऊंचे दबाव से पानी छोड़ जाने की पद्धति। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि पहले दिन सैंड फिल्टर में कहीं किसी तरह की गंदगी जमा हो तो वह पानी के साथ बाहर आ जाएगी और उसे आसानी से दूर किया जा सकेगा। स्क्रीन फिल्टर का ढक्कन स्क्रीन फिल्टर की गोलाकार जाली में जो कचरा जमा हो उसे साफ कर लें। ड्रिप पद्धति चालू करने के बाद सारे खेत में चक्कर लगाकर यह अच्छी तरह देख लें कि सभी ड्रिपर्स चालू हैं या नहीं, पानी का दबाव ठीक है कि नहीं, जमीन में नमी का प्रमाण अनुकूल है कि नहीं, किसी लेटरल में से पानी टपक तो नहीं रहा। इन छोटी तमाम बातों की जांच इसलिए जरूरी है ताकि समस्या का निवारण आप तुरंत कर सकें। हम प्रतिदिन की देखभाल की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं प्रति सप्ताह की देखभाल। प्रति सप्ताह सैंड फिल्टर की सफाई हाथ से और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा करनी चाहिए। स्क्रीन फिल्टर के फिल्टर एलिमेंट की सफाई भी सप्ताह में एक बार जरूर कर लें। सप्ताह में एक बार या आवश्यकता के अनुसार लश वॉल्व को खोलकर सहायक पाइप की सहायता जरूर सफाई जरूर करें। प्रति सप्ताह लेटरल्स एंड प्लग निकालकर लेटरल्स और सारे ड्रिपर्स की सफाई करनी चाहिए और हर रोज और हर सप्ताह देखभाल संबंधी सूचनाओं का पूरा आप अमल करें और ड्रिप पद्धति 80-85% तक बगैर तकलीफ के अपनी सेवाएं दे सकती हैं। इस पर खर्च भी आता है। इस पद्धति पर ड्रिप सिंचाई पद्धति पर लगने वाला खर्च मुख्यतः फसल की कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी पर निर्भर करता है। फलदार वृक्षों में लागत कम और सब्जियों में ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की और अब बात आज के मौसम की।

और अब आज के मौसम की जानकारी आपको दे दें। आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज की आर्द्रता 85% रिकॉर्ड की गई। और अब आज की बात चलते चलते आज की नसीहत।

बात करते हैं आज की नसीहत में पशुओं के लिए हरा चारा की। तो पशुओं जैसे गाय, भैंस और बकरियों के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के लिए हरा चारा सबसे उत्तम और पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं जो पशुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख चारे की हरे चारे की बात करें तो नेपियर घास, यह सदाबहार और तेज़ी से बढ़ने वाला चारा है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक लगातार हरा चारा देता है। बरसीम दलहनी चारा है जो दूध देने वाले पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक माना जाता है। रिचका, इसे चारे की रानी भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और पशुओं की सेहत के लिए बेहतरीन है। जई भी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक घास है। गर्मियों और बारिश के मौसम में मक्का और ज्वार का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हरा चारा खिलाने के कुछ मुख्य लाभ है किसान भाइयों, जैसे दूध उत्पादन में वृद्धि। पौष्टिक हरा चारा खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन और उसकी गुणवत्ता यानी फैट और SNF बढ़ती है। पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसमें मौजूद फाइबर और नमी पशुओं के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। साइलेज बनाना, जब खेतों में हरा चारा बहुत ज़्यादा हो तो उसे सुरक्षित रखने के लिए साइलेज बना लिया जाता है। यह गर्मियों या सूखे के समय पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ ध्यान जरूर दीजिए रखने जो कि बात हम आपको बता दें, जैसे पशुओं को हमेशा साफ सुथरा चारा दें। चारे की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दलहनी यानी बरसीम रिचका और गैर दलहनी यानी जई घास चारे को मिलाकर खिलाना चाहिए। पशुओं के लिए हरे चारे का सही इस्तेमाल आप कैसे करें, कैसे चयन करें? सभी दुधारू पशुओं के लिए चारा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि स्वास्थ्य और रखरखाव और दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व प्रदान करता है। मुख्य रूप से भेड़, बकरी पालकों और डेयरी किसानों के लिए पशुओं खिलाने के लिए हरा चारा खरीदने की तुलना में उत्पादन एक करना एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। दूसरी फसलों की तरह किसान इसे बाजार में बेचने का एकमात्र उद्देश्य के साथ हरे चारे की खेती भी करते हैं। घास की कुछ किस्मों का एक साधारण चारा काटने वाली मशीन का उपयोग करके छोटे टुकड़ों में इसे काट सकते हैं और इन टुकड़ों को लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और सूखे या इसी तरह की स्थितियों के दौरान चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हरे चारे की खेती या खुले खेतों में सही हाइब्रिड बारहमासी किस्म का उपयोग करके या हाइड्रोपोनिक प्रणाली का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो हम बातें कर रहे थे आज की नसीहत की, पशुओं के हरे चारे की, और कार्यक्रम की समाप्ति हम इसके साथ ही करते हैं। हमें दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए किए वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग, गोड्डा समेत कई शहरों में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। और एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य में आज से पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान देवेश तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
2: छात्रों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का शुरुआत किया गया, जो झारखंड की पहचान है। जो उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया गया। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया। और जो विकास के कार्य है 3 से आकांक्षी जिलों में चल रहे हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी किया है। नीट परीक्षा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीपीओ रूपक कुमार ने बताया कि जांच अभियान चलाकर विभिन्न होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों का सत्यापन और जांच की गई।
3: नीट परीक्षा जो कि दिनांक 21/6/2026 को प्रस्तावित है, उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न होटलों में चेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे परीक्षा में। तो संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों का सत्यापन कर उन्हें मूर्त रूप देने में ईआरओ एवं एईआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान एसआईआर के विभिन्न चरणों, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विस्तार से जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे और योग के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इधर साहिबगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम फूलो झानो इंडोर स्टेडियम में कल आयोजित होगा। साहिबगंज के जिला आयुष पदाधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने लोगों से निरोग रहने के लिए योग अपनाने की अपील की।
5: जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बढ़ती उम्र में हम इस योग का प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना, कैसे हम जुड़े, कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े। सब योग केवल रोग को नहीं ठीक करता, वो मन को भी ठीक करता।
0: उधर हजारीबाग जिला आयुष समिति और आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई और कल होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। वहीं गोड्डा में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 75 प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा। राजधानी रांची स्थित संत पॉल कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के CTSP पारस राणा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए मैच में भारत ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारतीय टीम की कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम में झारखंड की निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। फाइनल में अब भारत का सामना मेजबान न्यूजीलैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग गोड्डा समेत कई जिलों में निकाली गई जागरूकता रैली और FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सरायकेला शैली छऊ नृत्य को एक नया आयाम मिलने वाला है। इग्नू के माध्यम से कलाकारों के लिए 6 माह तथा 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होने वाला है। इसकी जानकारी पद्मश्री सशधर आचार्य ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से यह कोर्स प्रारंभ होगा। पद्मश्री सशधर आचार्य ने कहा कि
2: मई महीना में इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है कि 15 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। एक कोर्स है 6 महीने का डिप्लोमा, दूसरा कोर्स है 1 साल का डिप्लोमा। अगर ये डिप्लोमा को लोग करते हैं तो उनको जो अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली समय में मिलेगा, क्योंकि NEP के तहत ऐसा है कि जिस एरिया में जो डांस फॉर्म है, जो संगीत है, जो थिएटर है, फोक थिएटर है, उसी का ही टीचर को रखा जाएगा।
1: जिले में रफ बाइकिंग एवं मॉडिफाइड बाइकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने अभिभावकों से जागरूक होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें तथा कम उम्र के बच्चों और किशोरों को बाइक चलाने के लिए ना दें। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि
3: उसमें उनके पेरेंट्स की ज्यादा गलती है। बच्चा अपने से तो गाड़ी पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स की कहीं ना कहीं अनदेखी है या मूक सहमति है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स समझाएं, वो तो अबोध बालक बालिका है, ताकि उनके लापरवाही से ना दूसरे की जान खतरे में आए, ना उनकी खुद की स्वयं की जान खतरे।
1: कोटप्पा एक्ट के तहत जिले में निकोटिन युक्त पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है तथा उन्हें भविष्य में ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि
4: किला मुख्यालय के जो बाजार है उनके विभिन्न दुकानों में कोटपा एक्ट के अनुपालन और कोटिन युक्त पान मसाला की मार्केट में उपलब्धता क्या है और कैसे, उसको लेकर हम लोग सघन जांच अभियान चला रहे हैं। निकोटिन युक्त गुटखा पान मसाला भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कहीं कुछ प्रोडक्ट का संदेह प्राप्त होता है हम लोगों को, तो हम लोग उसकी सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज रहे हैं।
1: स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा जिला फुटबॉल लीग का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक कराने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 6 टीम तथा पुरुष वर्ग की 25 टीमों को शामिल किया जा रहा है। आयोजन की तैयारी अंतिम चरण पर है और खिलाड़ियों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस संबंध में DSA के सचिव मोहम्मद दिलदार ने कहा कि
5: सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 25 पुरुष टीमों और 6 महिला टीमों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस बार हमने 2 वेन्यू चुना है। बिरसा स्टेडियम सरायकेला में महिला फुटबॉल और पुरुष फुटबॉल के मैच खेले जाएंगे, 2 ग्रुप के मैच खेले जाएंगे, जहां 10 पुरुष फुटबॉल टीम और 5 महिला टीमें वहां भाग लेंगी और बाकी 15 टीमों का मुकाबला अर्जुना स्टेडियम खरसावां में होगा।
1: डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ष 2006 से लगातार जिला फुटबॉल लीग का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष भी जिला फुटबॉल लीग के जरिए ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तराशने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
0: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि। आज के हमारे फनकार हैं हरिहरन।

आप सुन रहे हैं स्वरांजलि कार्यक्रम के तहत हरिहरन की गाई गजलें। अभी आपने जो गजल सुनी उसके कलाम शायर थे कतील शिफाई। अगली गजल अनवर बेग साहब की लिखी हुई है, आवाज़ जी हाँ हरिहरन की।

हरिहरन की आवाज़ में अभी आपने डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी गज़ल सुनी। अगली गज़ल भी आइए सुनते हैं, डॉक्टर बशीर बद्र की ही है। आवाज़ जी हाँ, हरिहरन की।

0: जब से वो माह पार आ गया, शाम गम का सहारा गया। कलाम शायर थे शाहिद अख्तर। हरिहरन की गाई इसी गजल के साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विज्ञान जगत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नवीन शोध चल रहे हैं या क्या उपलब्धियां रही हैं, भारत विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है और पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उससे हमारी मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ने वाला है, इन सब के विषय में हम अपने इस अंक में आपसे बात करते हैं। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और उसका अवलोकन। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों की शुरुआत श्रोताओं 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ हुई थी। शुरुआती वर्षों में देश के दक्षिणी शोर पर तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के साथ वायुमंडलीय अध्ययन पर काम किया गया। 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी तरह से नए स्तर पर पहुँचाया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करना था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेषता राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित संसाधन सर्वेक्षण प्रबंधन, उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह मौसम विज्ञान, अनुप्रयोगों और अन्य उभरते क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर तरीके से परिचालन, अंतरिक्ष सेवाएं स्थापित करना और इन क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान और विकास करना है। अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। अंतरिक्ष विभाग यानी कि DOS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के साथ साथ अनुसंधान और विकास के लिए भी जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग DOS के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाना है। और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। और अंतरिक्ष सुधारों के बाद इसकी

0: भूमिका और इसके दायरे को बढ़ाया गया है, जिसमें पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए उपग्रहों का स्वामित्व और उपग्रह सेवाएं प्रदान करना, उपग्रह और प्रक्षेपण वाहन बनाना, प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र देश में निजी संस्थाओं की गतिविधियों की अनुमति देने और उनकी देखरेख करने के लिए DOS के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। श्रोताओं, इसरो के परिचालन प्रक्षेपण यान PSLV, GSLV और GSLV-M के 3 पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए अंतरिक्ष तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करते हैं। छोटे उपग्रहों की ओर वैश्विक बदलाव को पूरा करने के लिए समर्पित एक छोटा लॉन्चर SMLV विकासाधीन है। चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के 2 लॉन्च पैड देश को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता भी प्रदान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम अपने भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के विकास में लगा हुआ है, जैसे कि चंद्रमा के लिए मिशन चंद्रयान 3, सौर अन्वेषण मिशन आदित्य L, अंतरिक्ष वेधशाला एक्सपोसैट, ये सब। वर्तमान में प्रचालनरत मिशन एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। गगनयान का कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ऑर्बिटल मॉड्यूल और भारतीय मानव रेटेड लॉन्च वाहन का उपयोग करके मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाने के लिए एक मिशन शुरू करके मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को पूरा करना है। मानव युक्त उड़ान से पहले 2 मानव रहित उड़ानों की योजना भी बनाई गई है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकें जैसे क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम और पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और जिसमें कई व्यवसायों के निवेश के लिए अवसर हैं। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दृष्टि से भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सामूहिक रूप से घरेलू निजी कंपनियों ने वित्त पोषण जुटाया है। इसरो ने संयुक्त मिशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंगलयान मिशन के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिशन है और इसरो प्रक्षेपण यान और इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर जैसी नई तकनीकों के विकास पर भी काम कर रहा है। इसरो रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन और उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करता है और भविष्य में इन सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसरो ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई छात्रों, स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों को भी बिना किसी न्यूनतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह से उत्पन्न डेटा को उधार देने का भी फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले वर्षों में लागत प्रभावशीलता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए तैयार है। स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अभिनव समाधान प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। वे नए विचार और तकनीकें ला रहे हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति देने में मदद कर रहे हैं। इसरो के साथ ये काम कर रहे हैं जिससे उन्हें नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी और उद्यमशीलता की विशेषज्ञता मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य आशाजनक है जिसमें कई प्रमुख पहल और परियोजनाएं चल रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से निरंतर समर्थन के साथ भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए भारत तैयार है। तो श्रोताओं, आज हमने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में इस कार्यक्रम विज्ञान जगत में चर्चा की और अब आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। विज्ञान जगत से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। शीर्षक था भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और उसका अवलोकन। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का था। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसे हम प्रसारित कर रहे हैं, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
2: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें की लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, तो इस तरह की की जो योजना है और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
2: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
2: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
2: जाता है। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है, तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल,
2: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमो इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
3: देखिए सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
3: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
3: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है, तो जो उनकी रुचि है जो वो कर सकते हैं उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है, और इसलिए आप देखें खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था यूक्रेन से,

0: कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो हैं वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000 10,000।

0: हजार करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसे। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं IIT हैं IIM उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं, तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने चाहे खेल हो चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया

0: जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है। और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रतिवर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है किसान से, लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिए कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से, 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे, वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा

0: शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं।
1: बिल्कुल
0: हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ,
0: हाँ,
1: उन्होंने सम्मान
0: मिलन
1: दिलाया
0: श्री
1: है पूरे।
0: श्री अन्न उसको
1: जी
0: नाम दिया, जिसको
1: जी
0: मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए, मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए।
1: जी
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है, किसान को जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो
1: एक
0: जाके
1: बेंचमार्क
0: खरीद
1: सेट
0: ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना
1: जी
0: रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी। पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता।
1: बिल्कुल
0: सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी, मान लो, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज।
2: वीर जी, मेड इन इंडिया। वीर जी, एंडी तो चिपी भी इंडिया विच बन रही है।
3: कमाल है ना, कुछ साल पहले स्वदेशी जिहा कुछ भी नहीं सी, पर आज स्वदेशी का मतलब है टेक्नोलॉजी, शोर है, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर हजे तक भारत की ताकत होर भी बतानी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के
0: मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा।
0: हम इसको एक अगर देखे तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की और एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के, समझ के, जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया।
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं। जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ
1: चलो, और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मोर्टैलिटी रेट है।
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
5: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
5: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं भी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
5: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी अगर वो चाहे, शिक्षा वहां पे पहुंची।
5: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
5: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी आप भी कुछ

0: कहना चाहेंगी?
1: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास,
0: जी
1: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चलें। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है, वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब
0: जी
1: एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, नाइन्टी
2: हाँ,
1: नाइन तो हो ही चुकी, हो गई,
2: हंड्रेड हो
1: शायद
2: गई,
1: 100 हो गई
2: हंड्रेड हो
1: है।
0: और
1: गई।
0: ये सब चीजें युवाओं को भी
1: हाँ,
0: प्रेरित करती है
1: ये
0: कि हमारा कित
1: रामसर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देश और प्रधानमंत्री

0: भावे दायित्व ग्रहण करवा दिन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5

0: गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 46 crore rupees. Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi,

0: विकास को, यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।
1: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया मां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग की खसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राब्तों की भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज्यादा

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर,
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य।

बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

ताजमहल फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इसकी तर्ज बनाई थी रोशन ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश है दोस्ती फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ब्रह्मचारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं पहचान फिल्म से, आवाज़ मुकेश की है।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मन्ना डे की थी। अगला गीत आई सुनते हैं अंदाज फिल्म से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और साथियों की, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

महुआ फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा था, संगीतकार थे सोनिक ओमी।

खिलौना फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज मोहम्मद रफी की थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था उषा खन्ना ने। इसी नगमे के साथ ही आवाज़ का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
3: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
3: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
5: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 2,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।